وضرب لنا

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: कुल्लु मन अलैहा फान,
0: जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। फिर जब आसमान फटकर तेल की

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: 101 FM。
1: Hey, y'all! Got a brand new

लेकर आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हिमायत का एन आइडिया कि 2022 में पाकिस्तान को बहुत एड और बहुत हेल्प मिली इंटरनेशनल। 101 FM

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sunte rahiye FM 101.

0: This is FM 101.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ेरे तामीर तमाम दानी स्कूल मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान कुवैत दरमियान रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान हॉकी सीरीज का पहला मैच आज इस्लामाबाद में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.

में तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा। मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: मेरी गल सुन इत्थे बे
1: This is FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की।

0: This is
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: FM 101, a bale bale o shower shower.
1: तो बिस्मिल्लाह करते हैं।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और सेहत की कौमी खिदमात के वज़ीर ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है। नायब वज़ीर आज़म और तुर्किया के वज़ीर खारजा ने टेलीफोन पर हालिया इलाकाई और बैन अक्वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान ने फिर कहा है कि मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान और श्रीलंका की ख्वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 क्रिकेट मैच कल दम्बोला में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

FM 101, naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और सेहत की कौमी खिदमात के वज़ीर ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरतेहाल पर बातचीत की है। शहबाज शरीफ ने जिला हंगू में एक पुलिस चौकी पर फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दी के हमले की सख्त मजम्मत की है। नायब वज़ीर आज़म और तुर्किया के वज़ीर खारजा ने टेलीफोन पर हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पूरे सूबे में सेफ सिटी अथॉरिटी का आगाज कर दिया गया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: This is FM 101.
2: Tune in to One Above, FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम मुमकिन सहूलतों की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान और तुर्किया ने फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक की गैर मुतजलजल हिमायत का अयादा किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका की ख्वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच कल दम्बोला में खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सरल संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बरास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव एफएम 101।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बारास्ता जन्नत बहुत जल्द।
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव एफएम 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए तवानाई के शोबे में हर सतह पर ठोस इकदामात की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि दोस्त ममालिक के साथ तालीमी तआवुन के दायराकार को मजीद वसी किया जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आज़ादी के मुतालबे को दबाने के लिए भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में खौफ और दहशत की फिजा कायम कर रखी है। आज इस्लामाबाद में बैनुल अक्वामी हॉकी सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 1-3 से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
4: Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked.

What a beautiful melody. सुनने के बाद ऐसे लगता है जैसे मेरी बात, ऐसे लगता है जैसे मुझसे कोई गुफ्तगू करता है, मुझे कहता है तू झूम, सब कुछ भूल के, हर चीज को भुला के अपने आप से एक कदम आगे निकल। वो दीवानगी जहाँ इंसान फितरी तकाजों से एक कदम आगे बढ़ता है, माशर्ती रवैयों से आगे बढ़ता है, हर चीज को भूल कर बहस निगाह आपकी अपनी ही जात की तरफ वापस लौटती है। एंड यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग एवरी सिंगल सिचुएशन।

0: लव एनीवन। और जो कहते हैं ना हमें मोहब्बत नहीं हुई, उन्हें चाहिए पहले अपनी ज़ात से मोहब्बत करना सीखें। आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बात सही कह रहा हूँ मैं, ट्रस्ट मी। एंड थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया जी। एंड यू कैन वॉच माई लाइव स्ट्रीम RJ.DOX डॉक्स, अगर आप लिखेंगे आपको मेरी वीडियो स्ट्रीम मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, पहली मरतबा सुनना शुरू किया, और इसके अलावा मेरी स्टैटिक पोस्ट है FM 101 लाहौर फेसबुक पे, आप सर्च करेंगे वहाँ मिलेगी, और FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह पोस्ट है। यू कैन हिट मी विद योर कमेंट। एंड ऑल्सो टेलीफोन लाइन चल रही है साड़ी, है चेक कर दीजिए, अनाउंस कर दूँ। अच्छा ओके, नहीं बोलो जरा।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: आर की आवाज़। अच्छा जी, हमसे रब्ता कर सकते हैं 0421-1100-101, 0422-111-0101। और जिनके पास इंटरनेट की रसाई नहीं, वो मुझे SMS कर सकते हैं, और SMS करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है आपने, 101 लिखना, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना, और इसको भेज देना 4471 पर। एंड आज जुमेरात है, जुमेरात वाले दिन हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पे, रंगों की नफसियात पे, आपकी ज़ात पे किस तरह से असर डालते हैं, असर अंदाज होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे अभी है, इस पे थोड़ी सी और बात भी करूँगा मैं। लोग ये कहते हैं हम सिर्फ रंग देखते हैं, आपका जहन रंग देखता नहीं, महसूस भी करता, इस पर भी बात करता है, और इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे भी आता है। आज वैसे हम किस कलर पे बात कर रहे हैं मोहसिन?
1: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं।
0: पहले जो बोले थे उस पे क्यों नहीं सलाम किया था तुमने? पहले भी ऑन एयर वाज गई तुम्हारी।
1: नहीं, पहले भी मैंने सलाम ही किया था।
0: किया था?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, वालेकुम सलाम,
1: कैसे हैं आप? ठीक।
0: अच्छा अच्छा है।
1: सर आज हम बात करेंगे जामनी कलर पे।
0: जामनी कलर? अच्छा, पर्पल पे कर रहे हैं। ओके, वी आर गोना टॉक अबाउट पर्पल कलर, साइकोलॉजी ऑफ पर्पल। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक हो गया। और SMS करें, एंड यू कैन आस्क मी अबाउट एनीथिंग। यार मेरा कैनवस बहुत बड़ा होता है, आपका जो दिल करता है उस पर आप बात कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हाथ थामें और मुझे ले चले, अपना मौजू बनाएं, बताएं, मुझसे पूछें, आस्क मी अबाउट एनीथिंग, कुछ भी, मैं आपसे आपके मौजू पे आपके लिए बात करूँगा। यहाँ पे आना आपके लिए होता है, यहाँ पे बैठना, गप्पे लगाना सिर्फ आपके लिए होता। सो यहाँ पे अभी हम कुछ प्ले करें और उसके बाद वापस आके बात शुरू करें।
1: जी जी।
0: ओके, दैट्स ग्रेट। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ दो इंटर्न्स भी हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे, और उनसे भी सलाम दुआ कर लेते हैं। सलाम अलैकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम सर,
0: अपना तारुफ करवाएं।
2: मेरा नाम हमजा अहमद रजा है, और
0: थोड़ा माइक के करीब हो।
2: मेरा नाम हमजा अहमद रजा है और UCP से मेरा ताल्लुक है। FM 101 में मैं एज ए इंटर्नी जो है वो आपके साथ जो मेरा सफ़र है वो रवा दवा है, और इसी में ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत मज़े की चीज़ें सीखने को मिल रही है, और सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है ना वो हमें बहुत मज़ा करवा रही हैं, क्योंकि आपने जो एक्टिविटीज़ करवाई उसमें बोलने का, उसमें अपने अल्फाज जो है वो डिलीवर करने का जो है एक हुनर जो है, गौर जो है वो आप हमें दे रहे हैं, वो चीज़ जो है वो बहुत इन्जॉय करवा रही है, और मैं उस चीज़ को वाकई बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो है ना
0: वो मेरे सामने बैठा थे। If you want to see that person, RJ.DOX डॉक्स लिखेंगे, आ जाएगा। और मैं इसे अक्सर पूछता हूँ, यार ये तुम इतनी भारी आवाज़ कहाँ से निकालते हो?
2: नेचुरल है।
0: बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इसकी, वेरी गुड।
2: आपसे हासिल की है, आपसे सीखा है, आपकी आवाज़ जो है वो मैं बहुत फैन हूँ, जब से मैंने आपको सुना है आपका दीवाना हो गया हूँ।
0: इसीलिए प्रोग्राम मेरा कोई नहीं सुना, ड्रामा करते हैं।
1: अभी थोड़ी देर पहले यही फरमा रहे थे।
0: अभी यहाँ पे मेरे पास दूसरे इंटरन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर?
0: तारुफ करवाए ना राहिल।
3: सर मैं हूँ मोहम्मद राहिल अशरफ, और UCP से मेरा ताल्लुक है, और बस आपके साए में रह रहे के सर हम सीख रहे हैं थोड़ा बहुत।
0: जो वो पौधे हैं जो साए में रहेंगे बड़े नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ धूप में जाए, धूप में जाए ताकि बड़े हों,
1: बड़े हों,
0: है ना।
3: बस सर जी क्या कर सकते
0: हैं, चले आज गपशप होती रहेगी। मोहसिन कौन सा कलर कह रहे हैं दोबारा
1: सर? आज हम पर्पल कलर पे बात करेंगे।

0: ये साइकोलॉजी ऑफ कलर्स का हमारा ये सेगमेंट है और आज का जो कलर है वो हमारा है पर्पल।
1: मेरे को कागज ले दें जानते हुए पुली ना।
0: नहीं मैं ले जाऊंगा, डोंट वरी,
1: पता लग गया नवा कट्टा खुले हो गए। एनीवेज कौन सा आप सुनना पसंद करेंगे गाना?
2: सर गजल में कोई लगा दें तो मजा ही आ जाएगा।
1: तो मैं गजल सुनाते हैं। गजल गजल कौन
3: सही जो है ना वो
1: कल आई सी मैं।
3: अच्छा,
1: आज कुछ और करते हैं। कल जरा मूड ही मेरा और चल रहा था ना, इसलिए मैंने लगा दी थी। रंजिश सही,
3: बहुत प्यारी गजल है सर।
1: दिल ने धोखा, ये सुनते हैं ना यार, चासा है की यकीन करो। तुम्हें उच्ची आवाज करके डांस कराते हैं तुमसे। ओके, आई लव दिस। नसीरुद्दीन नसीर साहब की, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का कलाम, उनके अंदाजे करम। अरे बड़ा खूबसूरत सी कंपोजिशन है, बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया लाइव पे। अभी आप लोगों के पैगाम शामिल करते हैं स्ट्रैक के बाद।

0: जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:51 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और मेरे साथ होते हैं मोहसिन हर शो में, आरजे मोहसिन है। और इसके अलावा आज मेरे साथ दो इंटर्न्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी। हमजा है मेरे साथ और राहील है मेरे साथ। और आई होप आप लोगों ने ज़रूर इंजॉय किया होगा इस ट्रैक को।
1: जी बिल्कुल सर।
0: हैं जी, माइक के पास आके बोल।
2: सुरूर आया है,
0: सुरूर आया। कल को कहीं भी जाओगे आप, कहीं पे पॉडकास्ट या कोई एक्टिविटी करनी है, ऑलवेज रिमेंबर डू चेक योर माइक कहाँ पे वो कल क्या आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने बोलना है या अपनी आवाज़ को फिर ऊंचा करते हैं।
2: एग्जैक्टली,
0: ऑलवेज व्हेन यू वांट टू गो डीप माइक के करीब होना।
2: ओके,
1: बस सर यही तो आपसे सीख रहे हैं।
0: डीप फेर गया क्योंकि वो आवाज और हवा और सांस के साथ गुफ्तगू करना। एनीवेज यार, ये कलाम है ना, बड़ा मजा आता है और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आप अकेले बैठे हो, आपके जहन में कभी कोई ऐसा चेहरा आ ही जाता है। आपने पता नहीं अभी लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं इस तरह के, लेकिन बंदे को जरूर होता है होता जरूर है यार, व्हेन यू स्टार्ट लविंग इट। और आपको जब उससे कोई मिलती जुलती चीज मिले ना, अशार की शक्ल में, किसी किस्से या कहानी की शक्ल में, जिसे आप कह रहे होते हैं दिस इज एक्चुअली रिलेटेबल है, हाँ ये मेरे से मिलती जुलती कोई चीज़ है, ये मेरी सिचुएशन जो चल रही है उससे मिलती है, पर मजा आता है और
1: रिलेट कर ही जाता है बंदा सर।
0: हाँ, ऊपर से वो भी क्लासिकल टच में,
2: हाय हाय हाय हाय हाय,
0: उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का, आए वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, जिंदगी गुजरी मगर दर्द न जाना दिल का।
1: वाह वाह, क्या बात,
0: क्या बात। इसी तरह वो मुझे याद आ जाता है, वो क्यूबी ने भी एक बड़ा अच्छा गाया था, वो हम सफर था।
2: हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: हम नवाई
2: नवाई
0: ना, है ना, ये तो मैं कह रहे हैं एंड जाके बजता है ना, फिर वो हम सफर था
3: डायरेक्ट,
0: है ना,
2: डायरेक्ट हिट होता
0: है, मगर उससे हम नवाई ना थी। आई जस्ट लव इट, वो भी बड़ा मजेदार ट्रैक है। एनीवेज, आज हम कलर्स पे बात करने वाले हैं और कलर्स के हवाले से लेट मी क्लियर अ फ्यू थिंग्स जो कि अक्सर बात की जाती है। देखें, यहाँ पे बैठ के साइकोलॉजी ऑफ कलर पे बात कर रहा हूँ ना मैं। साइकोलॉजी ऑफ कलर होती है साइकोलॉजी ऑफ बॉडी, जेस्चर होते हैं, पोस्चर होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, साइकोलॉजी ऑफ फेस फीचर्स होते हैं, आपके हेयर स्टाइल्स, आपकी ड्रेसिंग, हर चीज। ये साइकोलॉजी का वर्ड जिधर आ जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी जात के बारे में कुछ खबर दे रही है। लेकिन बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि मुकम्मल तौर पर आपकी जात को कोई भी चीज बयान कर दे। उसको समझने के लिए जरूरी है कि किसी शख्स को अगर आप मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न कि वो कहाँ से आया है, उसकी परवरिश कैसी हुई, उसका ब्रॉटअप कहाँ पर हुआ, किस तरह के माहौल में रहा, और उसका ख़ानदान, उसके मामलात, उसका उठना बैठना, उसकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जब आपको समझ आती हैं उसके बाद फिर ये बाकी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं एक्चुअली टू आइडेंटिफाई एंड लर्न। तो अगर महज सोचा जाए कि रंगों से ही किसी की ज़ात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो अड्डा सेने कोई नहीं है। यू कैन नॉट डू दिस ना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बड़ा लंबा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप किसी को बैठ के देखते हैं, आपको मोटी मोटी चीज़ों का तो ज़रूर पता चल जाता है, हाँ ये बंदा आया सामने बैठा है, किस अंदाज में बैठा है, कपड़े किस तरह के पहने हैं। फिर उसके साथ आप टाइम जब गुजारते हैं फिर पता चलता है इसके कलर की चॉइस क्या है।
2: बिल्कुल,
0: वो कलर की चॉइस उसकी ज़ात पे असर बाद में करेगी, मेरी ज़ात पे तासुरात लैदा बनाएगी। कहते हैं जो बंदे पीस लवर होते हैं ना जी, उनकी चॉइसेस होती है बड़े सफ़ेद से रंग की, ब्लू कलर्स की, और जिन्हें पसंद होता है डोमिनेट या ताकतवर होना, ताकतवर होने का जिन्हें बड़ा शौक होता है उन्हें डार्क कलर, ब्लैक कलर पसंद,
1: ब्लैक पहनते हैं सर,
2: ब्लैक पहनते हैं,
0: शौक होता है ताकत डोमिनेंस,
1: ब्लू सर बहुत चलता है।
0: और जो बड़े प्रोफेशनल किस्म के हैं वो ब्लू कलर लेते हैं,
2: एग्जैक्टली
0: ग्रीन कलर लेंगे, इस तरह के कलर। चॉइसेस आपकी आपकी जात को डिफाइन करती हैं। आप एक अरसा गुजार देने के बाद यू लर्न थिंग्स कि अच्छा यार ये मुझे चाहिए ये नहीं चाहिए, आपके अंदर के इम्पैक्ट निकल के बाहर आपकी चॉइसेस आपके कपड़ों पे, आपके जूतों पे, आपके बाल बनाने पे, आपकी हर चीज़ को डिफाइन करना शुरू करते हैं। सो दिस इज़ हाउ साइकोलॉजी ऑफ कलर वर्क्स। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार 100% यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट एनीथिंग, नहीं हो सकते। वो तो पंजाबी से कहता है आंखों देखा भी जो है ना झूठ हो जाता, आप देखते हैं कुछ है निकलता कुछ है,
3: निकलता कुछ है
0: ना,
3: ऐसा ही है।
0: हाँ हाँ, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, करने वाले बढ़ते हैं, कारकुर जाते हैं। फरहीन शहजादी गेस्ट को मेरा सलाम कहें।
2: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमें मैसेज किया था फिजा राजपूत ने, थैंक यू वेरी मच जी। और वकास अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, मंडी बहादीन से आप सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। सारा अली जई कहती हैं पर्पल कलर, बिल्कुल ऐसे ही। इस्लाम गुजर साहब आए हैं और उन्होंने सलाम किया और कहते हैं अपने ग्रुप वालों को, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप नहीं आए, मैंने तो कहा था आ जाए, आप नहीं आए, आपकी गलती है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, अपने ग्रुप वालों को बुला रहे, बाकी जब बुला भी लवा तो मेरी मर्जी। अच्छा जी, बहुत कोशिश करता हूँ आपके शो में कॉल मिल जाए, ज़रा कोई बात नहीं, लाहौर से तो ना मिलेगी, इस्लामाबाद से लाजमी। अच्छा चले कोई नहीं, आज कॉल मिलेगी। अच्छा जी, फिजा राजपूत हैं, सुलेमान चांडिया बलोच साहब ने सलाम किया, मोहसिन भाई को भी
3: वालेकुम सलाम।
0: रहमान भाई के बगैर डांस कैसे होगा, रहमान भाई के बगैर वाकई डांस नहीं होता,
3: डांस हमारे साथ डांस होता है, रहमान भाई के साथ डांस होता है
0: ना, फिर मजा आता है डांस करने का। विकास कहते हैं मजेदार गजल लगाई, गुस्सा नहीं करना बॉस, केड़ी गल का गुस्सा कर रहे हैं। मैं बिनत सदीक, थैंक यू वेरी मच जी, गॉट योर इमोजी। और फरहीन शहजादी, सुनने वालों को फकत फर्जी बयान लगता है, तेरा हर बोल मेरे दिल पर यहाँ लगता है, तेरे बाद कोई शख्स कहीं पर भी हो, ओ भले ढेर हसी दिल को कहाँ लगता है,
3: क्या
0: बात है, सही कह रही हैं आप, वाकई सही कह रही हैं। शेब है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम सलाम। अच्छा अभी एक्चुअली न्यूज ब्रेक भी आने वाली है, हम न्यूज ब्रेक भी लेंगे और फिर उसके बाद विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कलर। एंड इदरीस चित्राल से सुन रहे हैं हमें, क्या हाल है इदरीस, वालेकुम अस्सलाम, बताओ चित्राल का आज मौसम कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग।
3: प्यारी जगह से सुन रहे हैं सर।
0: हाँ बहुत अच्छी जगह से सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हमें वो श्रीनगर से साहब सुनते थे, वो नहीं है याद है पान। याद है वो सर खबरें आने वाली हैं, मुँह बंद कर लो।
3: मुँह बंद कर
0: लो, मैं ठीक है जी, कर लेते हैं। अच्छा अभी तक नहीं हुई जी। और आप मुझे एसएमएस करें और जो कलर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं उन पे बिल्कुल थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नए जो भी कलर डिस्कस नहीं किए उन पे बात नहीं करूंगा, जो अभी करने हैं उनका तो नहीं, खैर जो कर लिए उस पे चलें थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा आपको, कंपैटिबिलिटी आपने कलर लिख के भेजना फलां की फलां के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करके बताएगा क्या आता है, फिर आई विल टेल यू कि अगर आपको ये कलर पसंद है उसे ये कलर पसंद है तो आपस में आपके मैच मेकिंग किस तरह से हो सकती है, वन अबाउट द कंपैटिबिलिटी। और पहला मैसेज हमें आया हुआ जी, अस्सलाम वालेकुम 4471 के मैसेज पढ़े, भाई कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, आपका शो आज थोड़ा सा रुक कर चल रहा है, जूनी फ्रॉम लाहौर, खबरें हैं जी
4: तमाम की।

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है जी 11:01 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे नॉक्स। और आज 30 जुलाई 2026 का सन है और आपका मेरे साथ होगा जी 12 बजे तक। और उसके बाद आज रहमान सुना है तशरीफ लाएंगे। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ कलर दैट इज पर्पल। और इसके अलावा हम सवाल भी पूछेंगे, आपसे कॉल्स भी लेंगे। और पिछले बंदे पहले पहुँच गए ना पहले?
1: जी बिल्कुल पहुंच गए।
0: अच्छा जी, उसमें वेलवीरा कंपनी की तरफ से ये भी था कि वो थोड़ा सा डिले हुआ, उनके कुछ अकाउंट्स के प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। और आई होप कि जो 4 विनर हमारे पास पेंडिंग थे उनके पैसे उन्हें पहुंच चुके होंगे। एंड ये जो सवाल किया जाता है वेलवीरा कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। अगर आप सर्च करेंगे अपने इंस्टा पे जाके VELVERA वेलवीरा कंपनी, और वहाँ पे स्किन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रेटिनल और लटरम पटरम और किड़े स्किन की स्किन वाइटनिंग भी है और खवातीन की प्रोडक्ट्स भी है। और ये UK से इनके क्लेम है जी, हम UK का वो ब्रांड की को फ्रेंचाइज यहाँ पे की है इन्होंने स्टार्ट। सो अगर आप वहाँ पे प्रोमो कोड उन्हें लिख के भेजेंगे RJ Docs तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा। मेरा ख्याल है 30% शायद दे देंगे, हम पहले तो 50% चल रहा था, अभी 30% तक लिख अगर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई गेस द प्रोडक्ट्स आर गुड, मुझे भी दिए हैं, एक दो दफ़ा यूज़ किया उसके बाद नहीं किया। मैं सोचना कि मेरी कड़ी रुखसती होनी है। तो मैं जी ठीक हूँ,
1: मुझे लगता है एट द एंड आपकी रुखसती ही होनी
0: है ना। एट द एंड रुखसती होनी है, वो वाली होनी जिहड़ी 4 बंदे ने चुक कर दी है ना। करने वाला काम कर यार, मतलब बाहर निकल के मैसेज कर लेता, मस्जिद में बैठ के मैसेज करते हैं क्या वजह, वहां पे नेटवर्क अच्छा आता है। सानू तो आजकल नेटवर्क नहीं लग रहा, मुझे बताना अगर मस्जिद में नेटवर्क अच्छा आता है मोबाइल का, मैं तो समझा था वहां पे नेटवर्किंग अल्लाह के साथ अच्छी होती है। तो अड्डा मोबाइल का चल रहा है, ये भी ठीक है जी। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। टॉपिक आपको पर्पल कलर है, पर्पल कलर पे आज हम बात कर रहे हैं, टॉपिक यही है। अच्छा, इसके बारे में अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करता जाता हूँ पर्पल कलर के बारे में। जो है नॉर्मली जो ऑब्जर्वेशन है, दया क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं और जहानत इनकी अच्छी होती है, तखयल में बहुत सारे काम, तखयलाती भी बड़े करते हैं, यू नो बिल्डिंग कासल इन एयर, हवा में बहुत सारे महल्लात बना लेना और सब्ज़ बाग दिखाने में भी बड़े माहिर होते हैं। तो अगर आपको कोई मिले ना इस तरह के सब्ज़ बाग दिखाने वाला, उन्हें पूछना तीन पर्पल कलर तो नहीं पसंद।
2: ओके, क्या बात है सर,
1: जो ख्वाबों की दुनिया बनाते हैं,
0: ख्वाबों की दुनिया, मैं और तुम होंगे दुनिया से दूर, कोई भी नहीं होगा, मैं चाहता हूँ बस तुम और मैं हों, दुनिया से दूर चले जाएँ किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर दोनों जंगली हों, पत्ते खा के गुजारा करें, पत्ते बहन के दिन गुजारा करें, हमारी तखयलाती दुनिया हो,
2: ये कहने की बातें हैं सर,
3: है ना? होता नहीं है ऐसा,
1: नहीं नहीं, नहीं तो फिर पर्पल कलर पसंद होता है जो इस तरह की बातें करते हैं।
0: मतलब सारे को नहीं बात है, मतलब कुछ लोग होते हैं क्रिएटिविटी से बात, ये बात वहां से आगे निकल गई ना,
1: ज़ेहन में सोच
0: से बात आगे से आगे निकल गई कि इट हैपेंस। वैसे तो तखयलाती दुनिया सारे ही बना रहे होते हैं और जहाँ पे मौका मिले छटदा कोई नहीं, आप सारे दिखाते हैं, देखो तुम अगर
2: खूबसूरत होती है लेकिन
0: तुम अगर मेरे साथ चलो ना
1: तो चांद तारों तक,
0: मैं चांद भी तोड़ लाऊंगा, सितारे भी तुम्हारे दामन में सजाऊंगा। और इसके अलावा स्पिरिचुअली ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं चीजों में लोग, और दे आर लॉयल। इसके अलावा मिस्टीरियस किस्म के भी लोग होते हैं ये, एंड सेल्फ अवेयरनेस अच्छी होती है इनकी। अब ये लाजिम नहीं है सारी क्वालिटी एक बंदे में ही पाई जाए, लेकिन कुछ जरूर पाई जाएंगी, ये मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं हमें माजवी ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम माजवी, डॉग्स एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच। आपने क्या तरीका पकड़ा, कभी आप स्कार्फ पहन लेती हैं, कभी आप बाल खोल लेती हैं, तो रोज डीपी बदल लेते हो, करना चाह रहे हो कंपटीशन तो नहीं है, खुद ही अपनी डीपीज बदल बदल के स्क्रीनशॉट ले लेके देख के खुश होती रहती है, आज मैं अच्छी लग रही थी, आज मैं ऐसी लग रही थी, ऐसा कोई सीन तो नहीं चल रहा। एनीवेज हम आगे इस पर बात करेंगे एंड आई हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछें जी।
1: पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ?
0: बड़ा गूगल करें, जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी करें, यू कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेज, लेकिन उसे मैं शामिल नहीं करूंगा, आप मुझे कॉल करेंगे, कॉल से ही विनर हम तलाश करेंगे। 0421100420101 इस पे आप कॉल करेंगे। और सवाल क्या है?
3: अगला सवाल है जी एम
0: भाई, है
1: पहले वाला, पहले एक ये वाला कंप्लीट
0: लिखना ना करिए।
3: ओके पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन जो है वो कहाँ पे कायम हुआ था?
0: हाँ जी हमदा, ओ राहिल आप भी दोहराएं सवाल।
2: सही है सर,
0: सवाल तो दोहरा दो।
2: सर पाकिस्तान का जो सबसे पहला रेडियो था वो कहाँ पे कायम हुआ था?
0: रेडियो स्टेशन एक लफ्ज बदल जाता है सब कुछ, है
3: एक नुक्ता बदल देते हैं, महरम से मुजरम कर देते।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये तो गाल सारे अनु याद हो गई है। कभी मुजरम हुए इस चक्कर में?
3: नहीं अभी महरम भी नहीं हुए, आप मुजरम की बात करते हैं।
0: मैं नहीं बता दूं, वो महरम से मुजरम पता कैसे होता है? पहले महरम थे, बाद में शादी किसी और से करके आपको मामू बना दिया, मुजरम हो गए। ये तो पहले कभी नहीं देखे। हाँ ये बेटा ये अब हुए ताजा ताजा, पहले नहीं थे,
1: ये भी 4-5 साल ही हुए,
0: उससे पहले नहीं थे मामू,
2: एकदम से हुए,
0: एकदम से हो गए मामू, है ना। ले यहाँ पे हम गाना लगाते हैं, क्यूबी का गाना लगाएंगे, लाइए फिर थोड़ा रोन पिटम पा दिए है, इज्तमाही तौर पर रोना शुरू करते हैं जी सारे मिलके, क्यूबी का गाना सुनते हैं। सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, आई जस्ट लव द ट्रैक, कुछ ऐसी मेलोडीज होती हैं यू कैन नॉट फॉरगेट देम, एंड ऑफ कोर्स योनी में सही का थॉटफुल, इट्स रियली थॉटफुल, एंड आई होप यू गाइस गोना लव इट। राणा मुजाहिद कहते हैं मुल्तान से सुन रहे हैं, ओके थैंक यू वेरी मच, हम गरीब लोगों का पैकेज मिनिमम है, ओके चले एंजॉय द ट्रैक, डोंट गो एनीवेयर।

इक्तफा कर लिया बस देखते रहने पे तुझे, वरना तो जिस का मुकद्दर हो वो क्या कुछ ना करे। दूसरी बार भी पड़ जाए अगर कुछ करना, आदमी पहली मोहब्बत के सिवा कुछ ना करे।

0: रिकॉर्ड किया जो फील चली है, और उसको मैंने वहां पे अपलोड किया। आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे ना, आपको मिल जाएगा। नवाल है, तुम्हें भूलने की कोशिश में हर रोज तुम्हें याद करने की आदत पड़ गई है। क्या बात है। साइमर रफीक साहब लाहौर से सलाम कह रही हैं।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। वेरी गुड। आज डॉग्स, आज मोहसिन गेस्ट वेलकम, रेडियो गेस्ट को वेलकम कर रही है रेडियो वर्ल्ड। सर डॉग्स प्लेलिस्ट से सुपर, बहुत मजा आ रहा है गपशप सुनने का। रिजवान सदीक हैं भेरा से, सर कल और परसों को क्या एंट्री मारी है जिया अंजुम और रहमान भाई के शो में, आपने मजा आ गया सर। आपसे मुलाकात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कब्र में बैठ के 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा।
2: ये भी सही है।
0: एक मुलाकात जरूरी है सनम, लव यू सर, लव यू टू। फिर आपने नंबर लिखा है हमारा ही 04211001 पर, किसी के शो और किसी के भी शो में मेरी कॉल नहीं उठाई जाती, क्या वजह है? तो मसला है नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आई एम वेरी एंग्री भाई, इसमें होता ही है। मेरे पास इस वक्त पैनल, अगर आप देख सकते हो ना, यहाँ पे मुझे नंबर नहीं नजर आते किसकी कॉल आ रही है किसकी नहीं आ रही। मेरे सामने एक लाइट है वो ब्लिंक करती है और मैं बटन दबाता हूँ तो वहां से कॉल ले लेता हूँ। दिस इज एज सिंपल एज आई एम टेलिंग यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप कॉल करें और मिलने के लिए आप तशरीफ ला सकते हैं जी लाहौर, आप जब चाहें आप यहाँ पे स्टेशन आ सकते हैं, मिल सकते हैं, मैं तो रोकता ही नहीं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाशमी साहब कैसे हैं?
3: हाशमी साहब नहीं, नीलाती का छोटा भाई तारिक।
0: अच्छा अच्छा। वो जो घर बाहर निकल के कॉल करता है मुंडा,
3: कार रेडियो सुन रहे घर वाले, मैं इसलिए बाहर आया हूँ।
0: आप जाते हैं उन्होंने कहना इतने मैं गल करा, मैंने तुम समझो कि रेडियो से कॉल नहीं की, मैं बाहर जाके कॉल करना, तुम रेडियो से सुन के रिकॉर्ड करना मैं।
3: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप आए और हम आपको कॉल ना करें या सकते हैं।
0: हाँ बहुत दफा होता है हमारी कॉल, बहुत दफा होता है आप कॉल नहीं करते।
3: नहीं वो हम मिलती नहीं है ना।
0: अच्छा अच्छा, मिलती नहीं है, सही कह रहे जी सर, बताए ना
3: जी,
0: पूछ लिया हमने सवाल। अहमद फराज साहब का असली नाम बताइए।
3: अहमद फराज।
0: आप बहुत आगे जाएंगे यकीन करें।
3: नहीं अभी वो फराज कह रहे थे ना, तो मैंने कहा मुझे याद था, मैंने कहा अहमद कहूंगा साथ, आपने पहले से कह दिया।
0: अहमद फराज साहब का नाम,
3: आई डोंट नो, मैं नहीं जानता।
0: तो ये कौन है फिर जिनका मैं नाम ले रहा हूँ?
3: नहीं नहीं उनको तो मैं जानता हूँ लेकिन रियल नेम का नहीं मुझे मालूम।
0: अच्छा अच्छा, और सुनाए तारिक भाई, सब अच्छा है?
3: All
0: well, मामला ठीक है, खुशबाश, एंजॉय कर रहे हैं,
3: एंजॉय
0: कर रहे हैं। बारिश से खलोते पानी से नहाते हो कि नहीं?
3: मैं यार वो एक्चुअली मेरा कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ना चोटें लगी हुई थी, से नहा नहीं सका।
0: अल्लाह आपको सेहत दे, मैं तो बड़ा मजा आंदा है, छड़प छड़प की आवाजें आती ना खड़े पानी से, बड़ा मजा।
3: गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है नहाने के लिए, तो आप कैसे नहा रहे हैं?
0: मैं नहर में नहीं ना नहाने जाता, मैं खड़े पानी में नहाता हूँ। बड़े शियार हैं आप, लेकिन मैं भी अपडेटेड हूँ। चले थैंक यू तारिक भाई, बहुत अच्छा लगता है। लॉस ऑफ लाइफ,
3: सबको सलाम, थैंक यू, सबको
1: सलाम।
0: देखो मुझे नहीं पता किसकी कॉल है यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, राबिया शफक कैसी हैं आप? आपको नहीं कह रहा, मुझे मैसेज आया। अच्छा, हेलो
4: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
4: इस्मी अबू बकर सर, लाहौर से।
0: ओके, हाउ आर यू डूइंग अबू बकर?
4: आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह।
0: दैट्स ग्रेट, व्हाट यू डू?
4: वेल्ला ही सर,
0: वेल्ला। मेरा वीर बड़ा बड़ा काम है, ये बड़ा औखा काम है, मैं भी बड़ा सा वेल्ला रहा हूं, हुन भी कभी-कभी वेल्ला बैठ जाना, और मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट काम है।
4: नहीं नहीं, छह दिन वेला रही था, इतवार भी छुट्टी करी थी।
0: क्या बात है, ए आइडिया ना, आने दो बस, मैं भी ये करना है, मैं छह दिन वेला रहना, एक दिन छुट्टी करना, इतवार वाले दिन आज ना तंग करो मैंने।
1: डन हो गया, डन हो गया, हैवी ड्यूटी है सर, हैवी ड्यूटी।
0: अबू बकर सवाल आपसे पूछा, उसका जवाब है
4: جی سر ان کا ریئل نیم ہے سید احمد شاہ.
0: یہ بات لڑکے یہ بات بہت

0: अच्छा लगता है जब आप लोग गूगल करते हैं, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका, जब आप चैट जीपीटी को यूज करें, एआई को यूज करें और जवाब दें। माय गॉड आई लव जेन जी यार, मेरे अंदर भी है, मैं अपने अंदर ना जेन अल्फा को लेके फैर रहा हूँ ना। आपने यहीं पर रहना अबू बकर, आपने कॉल नहीं बंद करनी, ठीक है? ओके जी, अबू बकर साहब ने बताया बेलवीरा कंपनी की तरफ से दो लोग जीत चुके हैं। और फिर मैं यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, और ख़ास तौर पे रेटिनल आजकल बहुत इन चल रहा है जी, रेटिनल इनका बहुत अच्छा है, और इनका विटामिन सी वगैरह के भी सीरम है, स्किन वाइटनिंग क्रीम भी हैं, कुछ इस तरह की 8-9 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनका यूके का मेरा ख्याल है फार्मूला है, और यूके की ही ये प्रोडक्ट को यहाँ पर फ्रेंचाइज कह रहे हैं। आप सर्च कर सकते हैं VELVERA वेलवीरा, और अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करेंगे RJ Docs लिखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है ना जी वो मिलेगा, क्यों मिलेगा, 30% तक ऑफ मिल जाएगा आपको। सो यू कैन कनेक्ट, यू कैन सेंड द मैसेज एंड अवेल द अपॉर्चुनिटी। चलो लड़को, यह तो हो गया काम पूरा, अब मुझे अपनी अपनी पसंद की कोई बात, कोई किस्सा, कोई पोइट्री, कुछ भी सुनाओ।
1: हमजा भाई आप शुरू करें।
0: मैं
1: पहली बात आपकी,
2: मेरी पसंद का किस्सा जो है, मुझे
0: लंबा किस्सा नहीं सुनाना, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर आपने बात पूरी करनी है,
2: 2 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा कि मुझे कहां कहां कब कब कैसे कैसे मार पड़ी।
0: ये
2: बहुत अच्छा है, मेरे साथ बड़ी दफा हो गया। एक दफा मैं कवरेज करने गया, मेरे पास माइक था, मैं पीछे उल्टा मोड़ रहा था तो एक बीबी के पांव पे मेरा पांव आ गया, और लेटर कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था, बीबी ने मेरी खुट्टी में रख के वो चपेड़ मारी। कोई चीज, मेरा प्रोग्राम वायरल जाए ना जाए, वो चपेड़ वो वायरल गई है। उसके बाद जो मुझे उस पर प्यार मिला ना वहां का चपेड़ के बाद, वो मुझे मेरे प्रोग्राम में नहीं मिला।
0: अच्छा मिला, अच्छा लगता है ना,
2: बड़ा मजा आता है।
0: मैं भी एक दफा गया, मैं भी रिकॉर्ड करने गया था।
2: ओके।
0: लाहौर कॉलेज के बाहर।
3: लाहौर कॉलेज के बाहर?
0: हाँ हाँ।
2: क्या?
3: अच्छा।
0: वो जड़ मुंडे टाइम नहीं चुक दे?
3: जी।
0: उधर गया था। उधर गया था। और वो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम वहाँ पे ना। और मैंने उसे कहा ये ट्रिक बताओ ना कैसे करते हो, उन्होंने कहा मसला कोई नहीं, ऐसे जाते हैं देखते हैं थोड़ी देर, जो लड़की समझ आ रही है देख रही है एक दो दफ़ा हम जाके बात कर लेते हैं। मैं कह नहीं ऐसे सिंपल है, सिंपल ये नहीं
3: होता।
0: कहा हाँ जी ऐसे ही होता। मैं कहा अच्छा वो उधर जो घड़ी है वो मतलब अगर मैं जाऊँगा गपशप लगा ली? हाँ जाएं। मैं चला गया, मैं एक सलाम कीता, उन्हें कोई जवाब नहीं दिता, दूसरा कीता उन्हें मेरे लिए इंच करके देखा, तीजी बारी कहा मैं बात सुने भाई, वो आगे से बोलती जी तो मैंने कहना था आप क्या करती हैं क्या नहीं करती, मैं
3: वो बात फिर
0: मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे आप बताएं ये बॉयज इस तरह करते हैं ओपिनियन का। जो तीजी बारी मैं बात सुने उन्होंने बात नहीं सुनी, और मैं कह रहा हूँ बस ना पूछो यार, बड़ा वो हमको याद आता है ना,
1: बहुत हो जाते हैं सर,
0: नहीं मुझे तो मजा आता है यार, बहुत मजा आता है, इतना सिंफ नाजुक का तुम्हारे चेहरे पे लगा यार। हाँ जी ऐसी होता
1: वाकया तो सर मेरे पास उस तरह का कोई भी नहीं है।
0: शेर सुना,
1: शेर सुना देते,
0: शेर सुनाओ। अली कुरैशी, आरजे अली कुरैशी सियालकोट से हमें सुन रहे हैं और बड़े अच्छे से आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। राबिया शफक कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शाहदेव शाहजू सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, यस बॉय जोड़ दो, सुनाओ।
1: शेर भी नहीं सुनाते सर आपको?
0: कुछ सुना,
1: कुछ सुना पड़ेगा, कुछ सुनाते
0: हैं। हाँ गुनगुना के सुनाओ यार, मैं तो भूल गया था। एक मिनट यार, ये तो लड़का सिंगर है
2: इनके,
0: लेकिन बोल जरा यो करके हैं अच्छा सा
1: सर।
0: हाँ ले जी इंजॉय करें आप,
1: सजाद अली साहब का है,
0: लेकिन फिर एवं नहीं, एक इंट्रो नहीं पूरा, जरा दो है अंतरास्थाई दोनों होना चाहिए कम से कम,
2: इंजॉय भी तो करें ना।
0: ओके राहिल यहाँ पे गुनगुनाएंगे और हम इंजॉय करेंगे, आप लोग चाय नहीं पी रहे प्लीज। दिस फील लाइक होम। आपकी वीडियो बन रही है भाई, लाइव हैं आप।
1: सर सजाद अली साहब जो हैं वो, उनकी मैं आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: मैं तेरी नफरतें ले कर चला हूँ,
0: बाबा
1: उदासियों के घर सजाने को, उदासियों के घर सजाने को। ये

0: आने को बने थे दो। अगला शेर सर आ रहे हैं।
1: बस शेर सुना रहे तू
0: सर, ये आखिरी शेर था।
2: अत्तम
1: सेकंड लास्ट
0: सेकंड लास्ट में सुना चुके हैं सर, आपको कुछ और सुना सुना देते हैं सर। मसले के
1: मुकम्मल को ही सुनाओ पूरा। कौन सा आता
2: है? अपना जो लिखा था वो बड़ा अच्छा था,
1: वो तो फिर लीक हो जाएगा।
2: हाँ, ना, आए, आए,
1: वो नहीं करना अच्छा था, वो बड़ी अच्छी। हाँ एक लाइन आप सुना सकते हो कि भाई ये गाना आने वाला
2: सस्पेंस क्रिएट कर सकते
0: आने वाला है।
1: हाँ आप ये बताओ,
0: और
1: आप
0: जल्द आएगा इंशाल्लाह।
1: सुन भी रहे हैं आप, बताओ इंटरनेशनल पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज आ रही है।
0: ये जल्द आएगा इंशाल्लाह,
1: लाहौर से कराची गिलगित केपीके और यहाँ से इस्लामाबाद स्कर्दू हर जगह आपकी आवाज आ रही है। अपना पूरा बताओ कि राहील काम कर रहा है जी, और राहील का अपना ट्रैक इसने हमें गुनगुना के सुनाया था, व्हाट अ लवली ट्रैक, बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लिखा। मैं चाहूंगा उसकी एक लाइन आप पूरे मजे से
0: अभी सुना देते हैं सर। सर जी क्या कहते हैं, ये जो है ना कंपोजिशन, ये थोड़ी सी है सैड।
1: कोई गल नहीं, असि बहुत उदास लोग हाँ, सानू तो बहाना चाहिए रोन वास्ते।
3: हमसे बड़ा उदास कौन है?
1: उदास देखो मेरे से ज्यादा उदास ही कोई नहीं। मैं तो रो रहा छेती से पहले ओए मैनू तो पहले ही दुख लग गए सैड गाने के सोच के। कम ऑन, क्या
3: एक मिनट दे सर,
2: कैफियत बना रहा है,
1: कैफियत
3: आ रही है।
1: अच्छा कैफियत के साथ गाते हो, तारी करना चाह रहे हो। अच्छा मुझे यहाँ पे मैसेज आया, सना कहती है अस्सलाम वालेकुम आरजे आप कैसे हैं, और दोबारा आप वो जो क्रीम है उसका नाम बता रहे थे, स्पेलिंग बताएंगे। VELVERA वेल वीरा, फिर दोहराता हूँ VELVERA। पाकिस्तान में कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, इनका इंस्टा पे आप सर्च करेंगे वेलवीरा, और इनकी प्रोडक्ट्स हैं ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे हैं, और जो बनी ही सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं, और इसके अलावा बाकी सीरम वगैरह बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। मुझे उसने दिया, कहता है बॉयज़ के लिए, मैं कहा फिर मेरे आस्ते तिनाना होया, फिर एन जी पे आया फिर मेरे को जी हो गया
0: सर, तारी हो गया सर।
1: हाँ चल
0: आ रहा है। मैं जो चाहूं तुम्हें ये गुनाह तो नहीं,
1: ये बात
0: तुम जो खुश हो कहीं ये सजा तो नहीं,
1: यही तो मैं कह रहा हूं यार।
0: मैं जो चाहूं तुम्हें लोग कहते रहे इश्क आसान नहीं, हमने माना मगर दिल ये समझा नहीं,

0: रख दिया, टूट जाना ही था, ये नया तो नहीं।
1: अब ऐसे करते हैं, बहुत अच्छा, लेवल लेवल लेवल हाई। अभी ऐसे करते हैं
0: सर, बाकी नहीं सुना सकते।
1: नहीं, आपने नहीं सुना इसको दोबारा से, मैं जो चाहूं तुम्हें, ठीक है? आपने पहली लाइन दो दफा गा के इसके बाद आपने अलाप पे आना है, इसी पे उसी लाइन को अलाप करना है। मैं उस पे पोइट्री पढ़ूंगा, मैं पोइट्री सेट करूंगा, आपने अगली लाइन फिर बोलनी।
0: ऐसे करें कोशिश।
1: हाँ नहीं, नहीं होगा ना,
2: होगा, बड़ा जबरदस्त होगा।
1: इस तरह बना लेना। चलो,
0: मैं जो चाहूं तुम्हें ये गुना तो नहीं, तुम जो खुश हो कहीं ये सजा तो नहीं, मैं जो चाहूं तुम्हें।
1: अगर से वक्त मरहम है मगर कुछ वक्त तो लगता है किसी को भूल जाने में, दोबारा दिल बसाने में अभी कुछ वक्त लगना है, अभी वो दर्द बाकी है। मैं कैसे नई उल्फत में अपनी जात को गुम कर लूं कि मेरे जिस्म वजदान में अभी वो फर्द बाकी है, अभी उस शख्स की मुझ पर निगाह सर्द बाकी है, अभी तो इश्क के रास्तों की मुझ पर गर्द बाकी है। हाँ, अभी वो दर्द बाकी है, अभी वो

0: लोग ही कहते रहे इश्क आता नहीं, हमने माना मगर दिल ये समझा नहीं।
1: बहुत आला, बहुत आला, चासा आ गई यार, छा गए, बहुत आला, बहुत आला जी, जबरदस्त। वक्त हो चुका है 11 बजे,
2: सब सूरत
1: है ना,
3: मजा आ गया,
1: मजा आया कि नहीं,
3: मजा आ गया,
1: चासा
2: ये आप भूल कैसे गए?
1: ओ यार मैं खुद मेरे जहन से निकल गया यार, इतना जबरदस्त गाता है यार ये। और
0: कोई सर इंपॉर्टेंट चीज ही बंदा भूल सकता है फिर
3: क्या ही कर सकता है। हाय हाय
1: हाय,
3: क्या कह रहे हो
1: लड़के, तुम खूबसूरत बात कह दी तुमने आज, तो छा गए हो, छा गए हो, बहुत मजा आया यार, इट वाज सो लवली। और पर्पल कलर पे हम बात को अपनी कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आज मैं गाना कोई नहीं लगाऊंगा, मैं चाहूंगा एंड पे कोई एक सोच लो किसी का ट्रैक जो भी आप चाहोगे, उस पे हम आपके हवाले माइक करेंगे और उस पे कंक्लूड कर दूंगा मैं, ठीक है? क्या ख्याल है?
0: बेहतर है सर।
1: हाँ,
0: ऑडियो ट्रैक आप लगाएंगे क्या
1: है?
0: सही है सर, ठीक है,
1: आपने रॉ गाना है, आपने ही गाना, ठीक है,
2: आपने ही गाना, जो भी गाना,
1: आपने रॉक गाना जी,
0: ठीक हो।
1: अच्छा जी, पर्पल कलर के बारे में बात कर रहे थे हम, इनकी मजबूती और उसके बारे में, हम कहाँ से कहाँ निकल गए, हम बात करते हैं, दे आर वेरी गुड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन और दूसरों के जज्बात को समझने की बड़ी अच्छी सलाहियत होती है इनमें, और इसके अलावा आर्टिस्टिक होते हैं, मौसीकी से दिलचस्पी होती है, और इसके अलावा ये बड़े मुनफरद किस्म के आइडियाज़ पर काम करते हैं और आइडियाज़ पर पोज करते हैं, और गहरी गुफ्तगू करना पसंद है, डीप टॉक, यू नो वो वाली नहीं, फलसफाना बात कर रहा हूं मैं, और इसके अलावा वीकनेस की वीकनेस की बात,
3: अच्छा किया मेरी वो फलसफाना बता के, अच्छा कर दिया,
0: मैं नहीं था कह रहा था,
3: बेहतर कर दिया।
1: और रियलिटी, अगर इनकी कमजोरियों की बात करें तो फैंटेसी में रहना पसंद करते हैं, देखिए बाघ बड़े बड़े दिखाते हैं, मैं सोच रहा हूँ भी पर्पल पसंद कर लूँ, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है फैंटेसी। और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, मूड स्विंग का अक्सर ये शिकार हो जाते हैं लोग, और दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेते हैं, और फिर इसके अलावा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और इनको क्या पसंद है, इन्हें आर्ट पसंद है, म्यूजिक पसंद है, पोइट्री, फलसफा, नफ्सियात, डीप कन्वर्सेशन, ऑफ माय गॉड आई शुड स्किप दिस वर्ड, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन्हें पसंद है, और इन्हें क्या नहीं पसंद है, आम सती से गुफ्तगू करेंगे वो इन्हें अपील नहीं करती, और कॉपी पेस्ट करना यानी किसी की तकलीद करना इनको नहीं पसंद, झूठ, बेमकसद जिंदगी और सख्त रूटीन भी ये पसंद नहीं करते। और अगर लव साइकोलॉजी की बात करें, पर्पल का बड़ा जबरदस्त किस्म की कंपैटिबिलिटी बनती है पिंक के साथ, दैट इज 89% कंपैटिबिलिटी इसकी पिंक के साथ बनती है, और इनमें इश्यूज जो आ जाते हैं दोनों सेंसिटिव होते हैं। और अगर ब्लू के साथ कंपैटिबिलिटी की बात करें, इट इज 86%, क्योंकि ब्लू जो होता है नॉर्मली प्रोफेशनल होता है, सुकून देने वाला, और पर्पल जो होता है इट इज अ डीप काइंड कलर, तो डीप कन्वर्सेशन पसंद करते हैं, और दोनों ओवर थिंकिंग की वजह से अक्सर क्लैश में आते
0: हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: है ना,
3: बहुत अच्छा
0: ऐसे
1: होता है ना,
0: बहुत ज्यादा सर।
1: हां देख लो फिर कोई बात।
2: बाय द वे, आपका कौन सा फेवरेट कलर
3: है? मेरा ब्लैक है।
1: और आपका?
0: लड़कों का मोस्टली सर ब्लैक ही होता है मेरे ख्याल से।
3: इसने अपना नहीं बताया?
0: नहीं, अपना।
1: अच्छा जी, पर्पल की ब्लैक के साथ कंपैटिबिलिटी 84% है, दोनों मतलब मिस्ट्री और डेप्थ को पसंद करते हैं, और लेकिन एक मसला ये, ज्यादा ओपन अप नहीं होते जल्दी, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है। पर्पल के वाइट के साथ 83% कंपैटिबिलिटी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और बैलेंस लाइफ गुजारते हैं, और इनकी फैंटेसी में और चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चलने में जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर। ग्रीन के साथ 81% कंपैटिबिलिटी है, और फैसला करने के अंदाज में इनके फ़र्क आ जाता है, अदरवाइज दोनों दे इमोशनली हीलिंग कलर्स फॉर ईच अदर। तुम कैमरे पे लाइव हो सारे, तुम्हें देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, माज बीन कह रही हैं टैलेंटेड बच्चा है, अल्लाह कामयाबी दे इंशाल्लाह, और सारों ने पसंद किया है, सारों ने कमेंट किए हैं यार बहुत अच्छा गा रहे हो,
0: बहुत शुक्रिया।
1: और ऑरेंज के साथ कंपैटिबिलिटी 76% है, और पर्पल, क्योंकि जो पर्पल और ऑरेंज की कंपैटिबिलिटी में इशू ये आता है, एक बड़ा तसल्ली से चलने वाला और एक बड़ी
2: स्पीडी
1: चीजें करने वाला। येलो के साथ अगर करें तो एनर्जी और मूड का फर्क आता है, 73% कंपैटिबिलिटी है। गोल्डन कलर क्योंकि कम लोग ही पसंद करते हैं, उनके साथ इनका अच्छा है, और ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है दोनों में अगर कहीं पे फंसे। रेड के साथ 66% है, रेड क्योंकि डोमिनेट करना पसंद करता है ना, रेड कलर वो कहता है डोमिनेशन मुझे पसंद है। वहाँ पे जज्बात जो है ना अक्सर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, वो डोई बेलना चाड़ू की शक्ल में विचार
2: करते हैं, फिर हो जाता है
3: कुछ भी हो सकता है।
1: हाँ, इस तरह कुछ भी हो सकता है। सो कुछ भी दे कुड बी एनीथिंग। वक्त हो चुका है 12:01 और यकीनन अभी यहाँ पे रहमान अनवर आने वाले होंगे, तो माइक आपके हवाले है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आप क्या सुनाना पसंद करेंगे हमें?
0: सर राहत साहब का है बहुत ही मशहूर, मेरे पास तुम हो का
1: सुनाओ ना है, लड़के
0: सुनाए
1: जरा फुल एंजॉय करके, जरा जाते जाते पैगाम ले ले मोहसिन।
2: सर बहुत मज़ा आया, और ये भाई जो हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे, और आपका गाना इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिट होगा
3: इंशाल्लाह। वाकई बहुत मज़ा आया, और सब लोगों के लिए यही है कि हंसते मुस्कराते रहें, और मुस्कराहट जो है वो आपके चेहरे पे होनी चाहिए, ये जिंदा दिल लोगों की जो है वो पहचान होती है।
1: क्या बात है लड़के, क्या बात है। और आ गया सिंगर ऑफ द डे, ये लो
0: सर,
1: हेलो जुड़ जाओ। हाय हाय हाय हाय, फिर तुम उदास उदास से गाने पसंद करते हो, लगता है मुंडे नू सट डाढ़ी लगी। बार मेरी तरफ से भी जी अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हम सुनते हैं एंजॉय करते हैं राहील को।
4: भूल जाने का हुनर मुझको स

लक्ष्य मिटाते जाओ। चलो रसमंदी सही मुड़ के देख तो लो।

से उतर जाएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा।

0: कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए।
1: ओए होए होए होए, एक मसला है जिसका हल तलाश करना है।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: मुझे तेरे साथ अपना कल तलाश करना है।
0: क्या बात है सर।
1: सुना है हर रोज कबूलियत का एक लम्हा होता है, दुआ सोच रखी है बस वो पल तलाश करना है।
0: क्या बात है सर, क्या बात।
1: ओके, रहमान अभी आए नहीं है, और जो लोग अभी भी सुन रहे हैं, मैं कहा यार मैसेज ही पढ़ जाऊँ, फिर बाद चो मैंने बड़ा गिला आंदा है, लोग की लड़ना शुरू कर देते हैं, आप कॉल भी नहीं लेते, मैसेज भी नहीं पढ़ते। याद अहमद ने मैसेज किया था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, मैं ठीक हूँ। कवल नाज का मैसेज आया था, थैंक यू वेरी मच। नैयर शहजाद है, बहुत शुक्रिया जी आपकी तरफ से, यमन से आप सुन रहे हैं सर, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप यमन से सुन रहे हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और एम रजा चौधरी साहब, सलाम किया, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप आज डॉक्स, मैं ठीक हूँ, नज़ीर खुश हो, थैंक यू वेरी मच। मेरा कमेंट नहीं पढ़ा भाई, पढ़ दिया, बड़ी माजरत यार है आज भाई। आइए, रहमान अनवर साहब आए हैं, थैंक यू वेरी मच। हमदुल्ला मलखेल, थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर मैसेज। बिनत सद्दीक, सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम जी, ग्रेट आज डॉक्स सर, सलामत रहें, शादो आबाद रहें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कैन यू गिव मी द माइक, मैं कल कोई एविडेंस दूंगा, फायर मैं मैसेज पढ़े ने ताड़े। ओके, इसके अलावा जी बिनत सदीक ने हार्ट भेजा, बहुत शुक्रिया जी। और नैयर शहजाद, आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शमसी रेडियो लिसनर क्लब की तरफ से रजा चौधरी साहब ने ज्वाइन किया था जी, बहुत शुक्रिया जी। हा हा, खेल किस्मत नहीं खेलती, कभी कभी इंसान भी खेल जाते हैं, क्या बात है, अच्छा कह रही है बिनते सदीक आप। चाय का कापा आपने भेजा, कॉफी भेजेंगी तो मैं पी लूंगा, चाह नहीं, चाह दी चाह, कोई नहीं, चाह की चाह मुझे होती है जब सामने रहमान आता है ना, फिर मैं कहता हूँ मुझे लिप्टन की चाह है ना रहमान। चुप, बोला नहीं, बोली ना बस। होने दे जो हो रहा है। मैं बोलना नहीं है, मकाम बोलने का नहीं है, सबर दा है ना, हौसले दे नाल वो बाद चो नतीजा आंदा है, ओहो ये तो गलत हो गया, हाँ लाइव जा रहे हैं। अच्छा जी, ओके, अमरीन लाला ने मैसेज किया था, आपने बताया था नाम, लेकिन ये कॉल पे लेना था जी। शहराम मलिक, सलाम किया सर, कैसे हैं आप, फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सुन रहे हैं अभी भी और आपका मैंने पैगाम पढ़ा है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और नौशीन राशिद कह रही हैं, अल्लाह आपकी आवाज़ में और दर्द दे। इस बात में मैं समझ नहीं आती, ये दुआ है या बददुआ है, अल्लाह आपकी आवाज़ में और दर्द दे। जलील साहब ने मैसेज किया रहीमियार खान से, थैंक यू वेरी मच। आयशा खान ने कहा नाइस, थैंक यू वेरी मच जी। और इसके अलावा हादी दुरानी है, कोयटा पश्तून आबाद से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका भी पैगाम मिला, एंड वेरी काइंड एवरीवन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। एंड वंस अगेन जी, आर जे रहमान अनवर आ चुके हैं, आपको असमा कौसर साहिबा भी आई, उन्होंने वेलकम किया है। अच्छा, आज फोन चल रहा है पाइन, यू कैन टेक कॉल्स, ठीक है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और रहमान अनवर साहब के हवाले करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा के जाते हैं ना, मुझे गाना पसंद आया हुआ, क्या करूँ ना, मुझे गाना बहुत पसंद आया, और होप यू गाइस गोना लव इट, और जिन लोगों ने सुना है वो तो खैर यकीनन इसको पसंद करते हैं, इस गाने को। टेक केयर, बाय बाय, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले बुध और जुमेरात को। और इसके अलावा नेक्स्ट वीक में या थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल चेंज होगा इंटर्न्स के हवाले से, आप सुबह के वक्त सुन पाएंगे आज रहमान को, ज़िया को और फरहान को, और मैं भी आपको अगस्त के महीने में सुबह मिलूंगा इंटर्न्स के साथ।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए ब्रिगेम का बाकायदा आगाज करते हैं।

मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरबों का। कदम जैसे सापा गमापा गा सारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन धनक दिन तनक दिन धना दिन बाम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई थी। कितनी फनकारियां कितनी बारीकियां कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितनी नुसरत फतेह कितने मेहदी हसन मुंतजर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सकें। अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है मगर मुड़के तकने को तू जो नहीं है। मगर मुड़के तकने को तू ही नहीं है तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डेवेंची उठे। कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में हर एक इल्म फन में हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी करती बराबर अंदाजा नहीं है।

0: करते हैं, टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। वैसे तो मैं कुछ अरसे से जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं उसमें कंबाइन प्रोग्राम्स ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे अकेले आपसे बात करने का मौका कम मिलता है, लेकिन मज़ा आता है आपसे बात करने में। बहरहाल, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आज हम प्रोग्राम में अफसाना शामिल करेंगे 1:05 पे, यानी कि 1 बजे मैं एक ट्रैक प्ले करूँगा, वो जितने भी मिनट का होगा उसके बाद हम वापस आएंगे तो डायरेक्ट अफसाने पे जाएंगे, और अफसाना मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट ले जाएगा। इससे ज़्यादा लंबा अफसाना मैं नहीं पढ़ता, अगर लंबा हो भी तो वो फिर उसके 2 हिस्से कर लिया करता हूँ कि 2 हफ्ते में वो अफसाना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अब से अफसाने जो हैं वो हर प्रोग्राम में, यानी कि जुमेरात का जो प्रोग्राम है इसमें हम ज़रूर शामिल किया करेंगे। बहरहाल, एक टॉपिक है छोटा सा जिस पे आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, छोटा सा तो नहीं है, बहरहाल हर जो बात होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई ना कोई इंसान ज़िंदगी के उस हिस्से से गुज़रा होता है, उसको उस सवाल का जवाब मालूम होता है, इसलिए हम टॉपिक को शामिल किया करते हैं कि गुफ्तगू की वजह बने, एक दूसरे के साथ बात करने की वजह बने। आज का मौजू, इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है?
1: ओ यार, मैनू डरा ही दिता तुसी, एक बार यकीन करो तुसी, वाकई डरा दिता। मैं नहीं, मैं वाकई डर गया, मैंने कहा ये क्या हुआ अचानक से एक बंदा यार। अच्छा ठीक है, आरजे डॉक्स आ चुके हैं जी हमारे साथ वापस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? हशाश बशाश?
2: हिलना नहीं, नहीं इतने चुप कर जा।
1: अच्छा ठीक है,
2: जो हो रहा है होने दे।
1: ठीक है,
2: हाँ
1: ठीक है,
2: हाँ खैर देखी जाएगी।
1: मैंने पता है केड़ी गल हो रही है।
2: जी कुछ ज्यादा मसला होएगा ना, उठ के थल्ले बैठ जाना पब्बा बार।
1: अच्छा, यानी कि गुस्सा जिस तरह ही लगे कि आ रहा है तो फौरन पैरा पार पै जाना है,
2: पार बह जाना
1: है। फिर उस तो इस तरह करके दोनों हाथ इस तरह करके है ना, हां मोढ़े पे रख के एक दूसरे
2: पार बह जाना है, टेंशन नहीं लेनी जी, वो तो गुस्सा निकल नहीं जाता।
1: यार रहने दो यार, अब टॉपिक क्या करना है?
2: नहीं नहीं, आप टॉपिक पे करें, मैं वैसे भी जाने वाला हूँ।
1: नहीं नहीं,
2: ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ।
1: अच्छा, पानी नहीं आप मेरे लिए,
2: गुस्सा आए इस तरह करें,
1: हाँ।
2: और रिच का ख्याल देन में होना चाहिए। थिंक अबाउट बियर, एक रिच का ख्याल देन में होना चाहिए, आपके जितने मजमूम इरादे हैं सारे बैठ जाएंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे।
1: यार मैं ना, यकीन करें, बहुत कम माइक पे खामोश होता हूँ, लेकिन मैं ना ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं नहीं चाहता कि ये मेरे ज़हन में इस तरह के ख्याल आता है। अच्छा, वो अच्छा जानवर अच्छा है, रीछ जो है ना वो एक अच्छा जानवर है, और खास तौर पे जो बर्फानी रीछ है ना, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है।
2: रीछ की हैबिट क्या है पता आपको?
1: क्या हैबिट है
2: रीछ की? सबसे बड़ी हैबिट ये है,
1: हाँ,
2: जिसको चुन लेता है ना,
1: हाँ, उसको कहीं से भी ढूंढ लेता है,
2: उसके पीछे जहां भी वो जाएगा पहुंच जाएगा।
1: हाँ यस, और ये ऊंट में भी ये आदत है।
2: ऊंट तो
1: सालों साल गुजर जाए
2: वो रखता है,
1: यस,
2: वो इंतजार करता है, आ जाए तो पकड़ता है, रीछ पहुंच जाता है आपके पास।
1: ओके, अच्छा, यानी कि वो कहीं पे भी हुआ,
2: हाँ, वो आप तक पहुंच जाएगा
1: अगर उसको आप पे गुस्सा आ गया,
2: आपको उसने चुन लिया जिस तरह से भी, उन्हें आप पहुंच जाना है ताड़े तक, इट डेफिनेटली फाइंड यू। अब डिपेंड करता है ना वो
1: पीछा कैसे छुड़ा
2: आपका, उससे तारफ हुआ उसके, वो आता है वो कब आता है ये अलग बात है, लेकिन उसका ख्याल आपके पास हमेशा रहेगा। एक दफा रीछ से तारफ हो जाए ना,
1: नहीं मैं अब जितने भी मेरे जहन में प्लान्स है ना कि मैंने ऐसी ऐसी जगहों को डिस्कवर करना है, वहां वहां पे जाना है और जगहों को घूमना है, जहां जहां पे रीच का सवाल आएगा ना, या जहां जहां पे रीच आएगा ना, मैं वो जगह मैं अपने उस ट्रेवल हिस्ट्री से निकाल दूंगा, मैं कहूंगा नहीं अब मैंने वहां पे नहीं जाना।
2: और मसला पता क्या है?
1: हाँ,
2: फिर आपको
1: फीसा गौरस है मसला,

FM 101, the sound of new millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

यहां पहुंचकर ये पगडंडी खत्म हो जाती है और इसके दोनों किनारों पर खजूर के नौम्र दरख्त और बबूल के खारदार पेड़ भी। अब कीकर और डीलिया की छोटी छोटी झाड़ियां इधर उधर सर झुकाए खड़ी हैं। मैं उसके चबूतरे पर बैठा गांव के तन्नूरों से उठते हुए धुएं के मरगोलों को देख रहा हूं, जिनमें बहुत सी जानी पहचानी सूरतें घूम रही हैं। सामने नीम के कसेले और बकायन के बक्सेले दरख्तों तले वो बूढ़ा हुक्का पी रहा है, जिसकी आंखों में अब शायद वो पहली सी चमक नहीं रही। उसकी झोंपड़ी से अब भी वही धुआं निकल रहा है जो हयात का सहारा और जिंदगी का आसरा है। उसके बच्चे एक पंप चलाकर पीतल की एक गागर भर रहे हैं। पता नहीं आग और पानी का खेल कब शुरू हुआ और कब तक जारी रहेगा। तुमने एक बार कहा था, याद है, कि तुम्हें बचपन ही से पानी के खेल बहुत पसंद थे और तुम सर्दियों की अखबस्ता और तारीक रातों को मोमबत्ती जलाकर गुड़ियों के फ्रॉक बड़े शौक से धोया करती थी। उसी शौक में बारिश में तुम्हें नमोनिया हो गया था, बड़ा मोहलक किस्म का नमोनिया। अगर उस वक्त तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी किस कदर खाली होती। बेजान गुड़ियों की आराइश की खातिर अगर एक जान चली जाती तो किसी को शायद पता ना चलता, लेकिन मुझे जरूर महसूस होता। अच्छा ही हुआ तुम जिंदा रही और मुझसे आ मिली। उसके बाद गुड़ियों से खेलने का दौर तो खत्म हुआ, पर ठंडे पानी में झाग बनाकर मुंह धोने का शुगल जारी रहा। काश तुम ये खेल अभी और जारी रखती। उसके साथ तुम्हें सर्दियों की पैदावार नरगिस के फूलों से कितना प्यार था। एक दिन जब तुम आपी के कमरे में गुलदानों में पड़े हुए नरगिस के फूलों को नई तरतीब दे रही थी तो तुमने पता नहीं हर फूल को कितनी मर्तबा चूमा था। और जब मैं दहलीज पर आकर खड़ा हो गया तो तुमने अपना स्वेटर नीचे खींचकर कितनी हसरत से कहा था, हाय फूल अगर बटन होते तो मैं इन्हें अपने बसंती स्वेटर में टांग लेती। इस पर मैं सोचने लगा था कि नरगिस के फूल किस तरह सख्त हो सकते हैं। मैं अभी इस बैग में ये फूल लाया हूं, पर ये तो अभी भी वही मुरझाने वाले फूल हैं, टांकने वाले बटन नहीं। और अगर ये बटन भी होते तो मुझे इस वासी में तुम्हारे मस्कन का निशा मालूम नहीं। लेकिन अगर मैं इन फूलों को इसी तरह अपने साथ वापस ले गया तो तुम शायद नाराज हो जाओ, है ना, जैसे अपनी सालगिरह की आखिरी तकरीब पर मैं तुमसे रूठ गया था। वो दिन किस कदर सोगवार था। मेरी सालगिरह की आखिरी तकरीब, जिसे मैं अपनी बिसात से बढ़कर धूमधाम से मनाया था, किस कदर सोगवार थी जब तुमने मुझे कोई तोहफा ना दिया। गो मैं जानता था तुम ना आ सकोगी, तुम मजबूर हो, मगर मेरा दिल चाहता था तुम एक बार ही आ जाते, सिर्फ एक बार, और फिर पलक झपकने में लौट जाते। लेकिन मजबूरियां पलक भी तो नहीं झपकने देती। दूसरे दिन तुम मुझे स्कूल जाते हुए रास्ते में मिली, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था अब सारी उम्र तुमसे नहीं बोलूंगा, और शायद मेरी जिद्दी तबीयत इस अहद को पूरा भी कर लेती अगर शाम को ब्रश करने के दौरान मेरे स्याह कोट का कॉलर ना उलट जाता, जहां रेशम के नरम तागों से एक नन्ना सा नरगिस का फूल कढ़ा हुआ था, जिसके नीचे तुम्हारे नाम का पहला हर्फ भी कशीदा किया हुआ था। वह फूल तो शायद इस कदर खूबसूरत ना होता जिस कदर हसीन उसका सहारा था। मुझे सालगिरह का उससे बेहतर कोई तोहफा ना मिला था और ना आइंदा मिलने की तवक्को थी, इसलिए वो आखिरी तकरीब बनकर रह गई। आज तक सोचता हूं और हैरान होता हूं कि तुम्हें कशीदाकारी का वक्त कैसे मिला। तुम हमारे यहां आते भी तो फौरन उल्टे पांव वापस लौट जाती, और फिर तुम्हारा फेरा कोई रोज रोज होता था। याद है एक दिन जब मैंने तुम्हें कहा हर रोज हमारे यहां आया करो, तो जवाब मिला था ये क्यों कर हो सकता है। फिर मैंने कहा अच्छा एक दिन छोड़कर ही सही,
तो तुमने इस पर भी मजबूरी जाहिर की थी, फिर मैंने कहा वादा करो कि, लेकिन तुमने बात काट कर कहा था, मैं वादा कैसे करूं? इस पर मैंने इतना भी तो कह दिया था कि बेहतर हो अगर तुम इस दुनिया में ही ना रहो, ताकि मैं आजादी से तुम्हारी कब्र पर तो आ सका करूं और वहां तुमसे वो सारी बातें कह सकूं जो अब तक ना कह सका था, तुम्हारे पहलू में इतनी देर बैठ सकूं जिसकी आरजू हर लम्हा जवान होती जा रही है। लेकिन तुमने कहा था ऐसे ना कहो, मुझे मौत से डर लगता है, मैं जिंदगी की इज्जत करती हूं, मुझे जमाने के बड़े बड़े मसाइब मौत के सामने हेच मालूम होते हैं। मौत यकीनी सही, लेकिन उसकी आमद से पहले उसका नाम मेरे दिल पर हौल तारी कर देता है। ना ना ना, मुझे डराओ नहीं, पर मैं तो उसके मुतालिक ही सोचता रहा और उस हसीन ख्वाब की आरजू कवी तर होती रही। काश काश ये ख्वाब शर्मिंदा है ताबीर हो सकता। वो दिन भी याद होगा जब मैं इम्तिहान देने लाहौर जा रहा था, तो तुम बहाने बहाने मुझे अलविदा कहने आई थी। मैंने पूछा था वहां से तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो जवाब मिला था अव्वल पास लौटिए, ये तोहफा यादगार रहेगा। मैं वापस आया तो तुम मुझसे पर्चों के बारे में ही पूछती रही और किसी चीज का जिक्र ना किया। मैंने तब यही बैग खोलकर तुम्हें स्याह रंग का रेशमी हेयर नेट और वीनस की रंग बिरंगी पेंसिलों का एक डब्बा दिया। एक बार तुमने कहा था ना, नटबॉल खेलते हुए तुम्हारे बाल बेहद परेशान हो जाया करते हैं, और पेंसिलों का डब्बा वो तो मैं बस यूं ही ले आया था। तुमने पूछा था इनसे किसकी तस्वीर बनाऊं, मैंने जवाब दिया था उसकी जिसका ये हेयर नेट है, तो तुमने कहा था उसकी नहीं जो ये नेट लाया है। यूं तो दुनिया में ऐसा होता आया है, मगर तुमसे इस तरह आंखें फेर लेने की हरगिज तवक्को ना थी। मैं इस वीरान वादी में अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मगर तुम्हें शायद मालूम नहीं, और अगर तुम्हें मालूम हो भी जाए तो फिर भी कुछ ना हो सकेगा। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूर कर दी गई हो, पर तुम अपनी इस तरह माजूर हो जाने की इत्तला तो भेज सकती थी ना। तुम्हारी उस दिलनवाज मोहब्बत को क्या हुआ, अगर तुम उस वक्त से पहले मुझे ये लिख भेजती तो क्या हम कोई तदबीर ना लड़ा सकते? तुमने मुझे इस कदर कमजोर समझा, क्या मुझ में नबरदाजमाई की कुव्वत नहीं, क्या मेरे कंधों पर एक शातिर का सर नहीं? और फर्ज करो हमको जल देना नहीं आता, तो क्या हम खुशामद के भी अहल ना थे? गांव से अब हौले हौले ढोल बजने की आवाज आ रही है, अभी इस पर जोर से डंका पड़ेगा और फिर इस गांव के सारे जवान झूमर डालकर नाचने लगेंगे और गाने लगेंगे। रोगा दी माड़ी जिंदड़ी अलील है, सोना नहीं सुनदा साड़ी अपील है। और मैं इस चबूतरे पर जिसकी आधी से ज्यादा ईंटें उखड़ चुकी हैं बैठा हुआ हूं। मेरी ना तो जिंदड़ी अलील है और ना मुझे अपील की जरूरत है। नीम और बकायन के झुंड तले वो बूढ़ा अब भी अपने हुक्के से सरगोशियां कर रहा है, लेकिन उसके झोंपड़े से धुआं निकलना बंद हो गया है। उसे किसी का इंतजार नहीं, लेकिन उसकी नशित इस अंदाज की है कि किसी की राह देख रखा है। ऐसे ही एक रात मैं अपने कैंप के मध्यम रोशनी में तुम्हारा इंतजार करता रहा। मेज के किनारे शायद मैं इसी तरह बैठा था जैसे अब इस चबूतरे पर बैठा हूं। उस वक्त मेरे सामने खुली हुई किताबें थी और अब ये खुला हुआ बैग है। तुम भाईजान और आपी के साथ सर्कस देखने गई हुई थी, याद है? मुझे पता है तुम्हें याद है। मुझे पता था आधी रात को तुम्हारा दरवाजा खोलने कोई नहीं उठेगा, और अगर मैं भी सो जाता तो तुम्हें किस कदर तकलीफ होती। लेकिन मैं सोता क्यों? मुझे मालूम था जब तुम मेरे कमरे से गुजरोगी तो सबसे पीछे रहोगी। आपी और भाईजान की मौजूदगी में मुझसे बात तो ना हो सकेगी, लेकिन जाते जाते अपनी मखरूती उंगली से मेरी गर्म गर्म गर्दन पर निशान बना जाओगी, फिर मुझे एक भरेरी सी आएगी, और जब तुम चली जाओगी तो मैं अपने कॉलर के नीचे इस बर्फीली मछली से खेलने के लिए बार बार झंझना उठूंगा, और फिर
और फिर ये रात उसी रोहों से बाजी करने में गुजर जाएगी। लेकिन लेकिन अब तो मुझे उस मखरूती उंगली के लम्स की तमन्ना नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे बर्फीली काश के तड़पने की उम्मीद नहीं। फिर मैं इस चबूतरे पर इसी अंदाज में क्यों बैठा हूं? शायद अचानक इसी तरह जिस तरह पिछले हफ्ते 10 रुपए का वो नोट जो फिर फिरा के मेरे हाथ आ गया, जिसके कोने पर मैंने तुम्हारे नाम के हिंट से लिखे थे, तुम भी आ जाओ। मगर ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी सादत पर किस कदर बरहम हुई थी मुझे अच्छी तरह याद है। तुमने कहा था आप दौलत पर मेरा नाम लिखकर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप अमीर हैं। मैं सरमाए की पुजारन नहीं, मैं सरमाए की पुजारन नहीं, जज्बात के मकतब की परवरता हूं। हमारे राबते को इतना सस्ता तो ना बेचिए। और जब मैं ये बात सुनकर जरा पशिमान हो गया था तो तुम्ही ने मेरी खिफत मिटाने के लिए कितने प्यार से कहा था, मुझे पता है, मुझे पता है आपका अनोखा अंदाज फिक्र कभी आपको एक अफसाना निगार बना देगा। उस वक्त आप किसी की किताब पर मेरे नाम के हिंसों की बजाय अगर मेरा नाम लिखा होगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। लेकिन मैं अफसाना निगार ना बन सका और तुम्हारे नाम से किसी कहानी को निस्बत ना दी जा सकी। और अब तो वो नोट भी मादून हो चुके हैं जिन पर तुम्हारे नाम के हिंसे लिखे थे। इस वक्त न तुम जज्बात के मकतब की परवरदा हो और न मैं इक्तसादियात का तालिब इलम हूं। मैं तो एक मुसाफिर हूं जो थोड़ी देर के लिए यहां आया हूं और इस चबूतरे पर बैठकर झूमर डाल कर गाने वाले घबरुओं की बनकारें और डोली में सवार कराती हुई हम जोलियों के दर्द भरे गीत सुन रहा हूं। मैं पूछता हूं तुमने इतने सारे वादे जो किए थे वो क्या हुए? वो लंबे लंबे प्रोग्राम जो हर रोज मुरतब होते थे अब किस तरह पूरे हो सकेंगे? अगर इसी तरह करना था तो मुझे पहले ही बता दिया होता। मेरे पास तुम्हारी कोई निशानी नहीं और मैं सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे इतनी लंबी उम्र बसर नहीं कर सकता। तुम्हारी याद ताजा करने के लिए भी तो किसी आश्रय की जरूरत है। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मेरे दिमाग से महव ही ना हो जाओ। गमे रोजगार बहुत ही दिल फरेब है। हम तकसीम मुल्क के बाद जो आज तक ना मिल सके इसमें सरासर मेरा ही तो कसूर था। मैं आज तक अपनी जिंदगी बरकरार रखने में कोशा रहा। इस दौरान में तुम्हारी याद मेरे जहन से बार बार आकर टकराती तो रही मगर ऐसे जैसे बारिश का कोई छींटा किसी दीवार से जा टकराता है। तुम्हारा चेहरा तखयल की वादी में लहराता जरूर रहा मगर मेरी बेपनाह गैर जरूरी मसरूफियतें उसके दरमियान अंधा शीशा बन गई। यही नहीं, बाज़ोकात मेरा दिल यूं भी चाहा कि मैं अपने दोस्तों की तरह किसी के साथ सिनेमा देखने जाऊं, तोहफे दूं और उनसे निशानियां वसूल करूं। पीतल की वो अंगूठी जो तुमने बड़ी खुशामदों के बाद मैंने तुमसे हासिल की थी, थोड़ा अरसा हुआ सतलुज में कश्तियां दौड़ाते हुए गिर गई। मेरा महबूब स्याह कोट मशरकी पंजाब में है। तुम्हारे नाम के हिंसे वाले नोट अब बंद हो चुके हैं और सतलुज का वो हिस्सा भी अब हमारे मुल्क में नहीं रहा। जिस दिन तुम्हारा कुंबा हमारे कस्बे को छोड़कर जा रहा था उस दिन मुझे परेशान देखकर तुम्ही ने कहा था कि कोई बात नहीं, एक ही जमीन पर है। लेकिन चंद सालों की बात है, एक दिन जब मैं शहर जाने की तैयारी कर रहा था तो तुमने मुस्तरिब होकर मुझसे पूछा था, हमारे कस्बे में कॉलेज नहीं खुल सकता क्या? क्यों? मैंने पूछा तो तुमने जवाब दिया कि एक ही बस्ती में खा दूर दूर रहें पर मिलना आसान होता है। अब तुम्ही से पूछता हूं कि मैं कहां बैठा हूं? क्या ये एक बस्ती नहीं? क्या ये एक ही जमीन नहीं? अब कहो मिलना आसान है। अब कहो मिलना आसान है। वो हम इतना अरसा दूर दूर रहे लेकिन इस दूरी का ये मतलब तो ना था कि तुम कोई और आगोश इख्तियार कर लेती। मैं तो हर घड़ी यही समझता रहा कि अब भी तुम्हें इसी तरह उसी शिद्दत से याद हूं लेकिन तुमने शायद ऐसा नहीं जाना।
अगर ऐसा समझती तो इस तरह धोखा ना देती। मशरकी पंजाब छोड़ने के बाद मुझे मुद्दत तक तुम्हारे अकामत पजीर होने का पता ना चला और ना मैं तजस्सुस करके मालूम कर सका। उन दिनों अपनी जिंदगी गैर मामूली तौर पर प्यारी हो गई थी। तुम्हारा सिर्फ इतना पता था कि तुम जिंदा हो और कहीं आबाद हो, इसी मुल्क में, इसी जमीन पर, पंजाब के किसी गोशे में। बरसों अचानक तुम्हारे भाईजान अचानक स्टेशन पर मिल गए। वो रावलपिंडी अपनी नौकरी पर वापस जा रहे थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बताया। चूंकि 4 दिन से ज्यादा छुट्टी ना मिल सकी थी इसलिए वो जल्द वापस जा रहे थे। उन्हीं की जबानी मालूम हुआ कि अगले हफ्ते तुम्हारा सारा कुंबा उनके पास रावलपिंडी चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें रुख्सत करने के बाद तुम्हारे अब्बा और अम्मी इस गांव में रहना पसंद नहीं करते। आज मैं यहां बैठा हूं, यही सोच रहा हूं कि आज और कल में कितना फर्क है, कितना बहुत है, इस कदर दूरी है। आज गांव में मुसर्रत के शादियाने बज रहे हैं, कल खुदा मालूम क्या हो। आज तंदूरों से धुआं इसलिए उठ रहा है कि जिंदगी की हरारत बरकरार रहे, कल शायद यही धुआं इसी हरारत को ठंडा करने के लिए बल खाने लगे। आज ये बूढ़ा इसलिए इंतजार की घड़ियां गिन रहा है कि कालबे इंसानी की तजलील ना हो, और कल आने वाली कल पता नहीं किस वक्त आए और कैसे आए। यहां पहुंचकर ये पगडंडी खत्म हो जाती है। बबूल के दरख्त खामोश हैं, डीलिया में मोटे मोटे खूनाब परोए हुए हैं। ये चबूतरा पहले ऐसा ना होगा, इसे चुनने वालों ने सीमेंट और रेत को अपने आंसुओं से गूंधा होगा। इसी तरह इसकी सतह पर अपनी पलकों की झाड़ू दी होगी और यहां अपनी सांसों के चिराग जलाए होंगे, लेकिन अब यह बिल्कुल उखड़ चुका है। इसके पहलुओं में चिंटियों ने बल बना लिए हैं और मुसलसल बारिश ने इसके तनवीरों को भूबला दिया है। मैंने कहा ना गमे रोजगार वाकई बहुत दिल फरेब है। मैं भी यहां पहली और आखिरी मरतबा आया हूं। कश्मकशे हयात बार बार रुख्सत नहीं देते। ये तुम्हारा गांव है, ये तुम्हारा कस्बा है, यही तुम्हारा शहर है, लेकिन मैं इसके कोने पर तुम्हारे मस्कन से बिल्कुल बेखबर बैठा हूं। मेरा यहां कोई भी वाकिफ नहीं सिवाय तुम्हारे, और तुम अनजान बनी बैठी हो। सिर्फ ये शादियों के तराने मानूस मालूम होते हैं जो हर शादी पर बजा करते हैं। शायद इनकी आवाज तुम भी सुन रही हो, लेकिन अब तुम कुछ भी कह नहीं सकती हो। मैं भी इनके बोल समझ रहा हूं, पर अब मजबूर हूं। पहले तुम्हारी बेरुखी से शिकवा था, अब नहीं रहा। अब हम दोनों एक से हैं। मुझसे अपनी याद में हशर के दिन तबाह करने की तवक्को ना रखना। मैं तुम्हारे बाद अपनी जिंदगी बहलाने के लिए तरह तरह के खिलौने खरीदता फिरता हूं, और यहां भी इसी की खुशनूदी हासिल करने के लिए आया था। शायद इसी को खुश करने के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था, अब इसी को मसरूर करने के लिए तुम्हारी बेइल्तिफाती का नजारा करने आया हूं। अभी उस बूढ़े की बीवी पीतल की कागर पानी से भरकर लाई थी, मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बैग को देखकर बोली कि इस कब्र पर पानी छिड़कूं मुसाफिर। मैंने जवाब दिया, यहीं इसी जगह जहां ये पगडंडी खत्म होती है, जहां से डीलिया और कीकर की झाड़ियां शुरू होती हैं। वो हैरत से देखने लगी और मैंने जेब से चवन्नी निकालकर कहा, हां यहीं इसी जगह हूं, ढेल दो। उसी राह गुजर पर यहीं कहीं इसी वादी में उसका मदफन है। वो उसी राह पर पानी उंडेल कर चली गई। बहुत से चूंटे जिनके घरों में पानी घुस गया था इधर उधर भागते फिरते। कितने ही बुलबुले जो पानी की सतह पर थिरकने लगे थे कांप कांप कर फूट गए। वो सूंधी सूंधी खुशबू जो मट्टी और पानी की हम आगोशी से पैदा हुई थी अब मिट चुकी है। पानी जज्ब होता जा रहा है,
ये खेल भी ख़त्म हुआ। अच्छा अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये रात बहुत लंबी है, ये सफ़र बहुत लंबा है, और ये ज़िंदगी तो बहुत ही लंबी है। और हाँ, नरगिस के चंद फूल तुम्हारे लिए लाया था, बसंती स्वेटर के जर्द जर्द बटन, इन्हें भी इसी सीली जमीन पर छोड़े जाता हूं। ये रात बहुत तारीख है, ये गांव मेरे लिए अजनबी है। आज रात कोहर के आसार नुमाया है, और मुझे बहुत दूर का सफर दरपेश है। अच्छा अब मैं चलता हूं।

0: سلامت رہے سر.
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. تماشا لگ جائے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام رحمان بھائی, پھر سے میں لائیو آیا ہوں.
1: جی جی,
2: ایک چھوٹا سا میں نے وہ لکھا ہے کچھ. راتوں کی نیند اڑی ہے جانو.
1: اچھا,
2: راتوں کی نیند اڑی ہے, کسی کم ظرف نے مجھے اوقات کا تانا دیا تھا.
1: اچھا اچھا ہے, بہت اچھا.
2: راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے جانو, کسی کم ظرف نے مجھے میری اوقات کا تانا دیا تھا.
1: خیال بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے. سلامت رہیں, تھینک یو ویری مچ.
2: اوکے, اللہ حافظ,
1: اللہ حافظ, اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ. ٹریگر کرتی ہے جب چیز, تو پھر ہم راستہ تبدیل کرتے ہیں, صحیح راستے پہ آتے ہیں. السلام علیکم جی. جی, کون بات کر رہے ہیں جی؟ عثمان, آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ عثمان, تھینک یو ویری مچ.
3: رولا دیا میرے ساتھ ریسنٹلی, ایک بات ہو رہا ہے, مجھے سارا بیک گراؤنڈ میں لے. میں اصل میں 100% بلائنڈ تھا.
1: اچھا,
3: میں ایسے ایک شخص سے جو بھی ہوتا ہے ہو گیا. ایک ساتھ پہلے اللہ کا شکر ہے تو آئس واپس آ گئی ہیں الحمد للہ,
1: الحمد للہ,
3: لیکن 30% ابھی نا واپس آئی ہیں
1: الحمد للہ.
3: اس نے دھوکہ دیا تھا, اس چیز کے لیے دھوکہ دیا تھا. لیکن آپ نے میرے بارے میں شیئر ضرور کہنا ہے, ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اس مان کے بارے میں.
1: اچھا ٹھیک ہے,
3: تھینک یو,
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, ٹریگر ہو جاتی ہے کوئی چیز, لگ جاتی ہے دل کے اوپر. عثمان, تمہارے لیے یہ شعر ہے, تم نے کہا ہے کہ میرے لیے ایک شعر کہنا ہے, تو ٹک ٹکی باندھ کے میں دیکھ رہا ہوں جس کو, ٹک ٹکی باندھ کے میں دیکھ رہا ہوں جس کو, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سامنے بیٹھا ہی نہ ہو. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: حمید گل صاحب, کیسے مزاج ہے آپ کے؟ آپ خیریت سے؟
4: آپ ٹھیک ہیں؟
1: اللہ کا بہت بہت کرم ہے, اللہ کا بہت احسان.
4: اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے,
1: اس کو,
4: اس کو ہے,
1: ہاں
4: اس کو. کس کو؟
1: وہ جو اس وقت مجھے اندھیرے کے اندر بھی نظر آ رہا
4: ہے. آپ بڑے دنوں سے خاموش تھے, آپ کا فون خاموش تھا, آپ نہیں تھے خاموش. چلے بغیر تاخیر کے آپ کو تہذیب آفی کی غزل سناتے ہیں.
1: ارے ضرور عطا کریں.
4: آپ کی نظر ہے پہلا شعر کی طرح, چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا.
1: واہ,
4: تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا.
1: گلا بیٹھ گیا, ہائے ہائے.
4: ویسے آپ کے چاہنے والوں نے بڑی آوازیں دی کہ, اور یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں.
1: ہاں یہ بھی بات سچی ہے, یوں نہیں ہے کہ میں ہی فقط اسے چاہتا ہوں.
4: یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں.
1: واہ,
4: جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا,
1: بیٹھ گیا, بیٹھ گیا. واہ واہ,
4: ہاں. اور اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ, مت پوچھ.
1: واہ واہ واہ, واہ واہ واہ,
4: اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ, مت پوچھ.
1: بڑی سچی بات,
4: اس نے جس جس کو بھی جانے کو کہا بیٹھ گیا,
1: بیٹھ گیا, جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا.
4: ہاں, اور اپنا لڑنا بھی محبت ہے, تمہیں علم نہیں.
1: ہاں
4: ویسے یہ بھی لمحے کہ اپنا لڑنا بھی محبت ہے, تمہیں علم نہیں. چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا.
1: ہاں چیختی تم رہی میرا گلا بیٹھ گیا, ٹھیک ہے,
4: میرا گلا بیٹھ گیا. اور اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے.
1: ہاں یہ بھی بات سچی,
4: اس کی مرضی
1: وہ جسے
4: پاس بٹھا لے اپنے. इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया,
1: क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया, बहुत अच्छा।
4: और इसमें एक शेर था सर के, बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ।
1: वाह वाह वाह, बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ,
4: बात सूरज की, बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया,
1: बैठ गया, बैठ गया।
4: आखिरी शेर सबकी नजर करते हुए जा रहा हूँ कि बजने जाना में निश्ते नहीं होती मखसूस।
1: ये बात अच्छी है,
4: बजने जाना में निश्ते नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया
1: बैठ गया। वाह वाह वा, अमित गुल साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहे।
4: थैंक यू, थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। हाँ, फला मेरी जगह बैठ गया, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। अच्छा ठीक है, दिस इज मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम। इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपना ख्याल रखना है, दुनिया की दौड़ में दूसरों को खुश रखने में इंसान खुद की जात को खो देता है। मुस्कान, ये बहुत सच्ची बात कही है आपने। वालेकुम अस्सलाम। अपने आप से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है, अपने आप से मोहब्बत या फिर अपनी जात का एहतराम ना करने वाला दूसरे के साथ भी पूरी यकसुई के साथ ना मोहब्बत कर सकता है ना एहतराम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम सलाम रहमान भाई, कैसे हो
1: जी? अल्लाह का बहुत करम है जी, बहुत एहसान है जी। कौन बात कर रहे हैं?
0: जमील खान शिनवारी, पिशावर से
1: जी। मेरे प्यारे भाई, क्या कहना चाहेंगे?
0: बस ब्यूटीफुल वॉइस यार।
1: अच्छा और सब खैरियत है, सब ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अफसाना भी बहुत अच्छा था,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें जी, आबाद रहें।
0: चंद शेर सुनाना चाहता हूँ
1: जी। सुनाए जी, सुनाए जी।
0: वसल ही वसल रहे हिजर का इम्कान ना हो,
1: वसल ही वसल रहे हिजर का इम्कान ना हो,
0: ए मेरे दोस्त ये रिश्ता कभी बेजान ना हो,
1: ए दोस्त ये रिश्ता कभी बेजान ना हो। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया।
0: और एक कैदी की तमन्ना है नया शहर मिले, एक कैदी की तमन्ना है नया शहर मिले, शहर ऐसा के जहां पर कोई जिंदान ना हो।
1: अच्छा है, बहुत अच्छा है, दोबारा कहिएगा, दोबारा कहिएगा, बहुत अच्छा।
0: एक कैदी की तमन्ना है नया शहर मिले, शहर ऐसा जहां पर कोई जिंदान ना हो।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यकीनन बहुत अच्छा।
0: इस कदर तंग है मायूस निगाह है उसकी।
1: अच्छा।
0: इस कदर तंग है मायूस निगाह है उसकी, इस कदर तंग है मायूस निगाह है उसकी, और इस कदर तंग है मायूस निगाह है उसकी, मौत भी सामने आए तो परेशान ना हो।
1: ठीक है,
0: बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया तो
1: कोई बात,
0: थोड़ी सी
1: हो जाता है, हो जाता
0: है।
1: बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा कहा आपने,
0: शुक्रिया जी।
1: सलामत रहिए, सलामत रहिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जिम्मेदारी का एहसास होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, ये पता मिल जाए कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं, तब चीजें चेंज हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
5: वालेकुम सलाम, क्या हाल है रहमान भाई, ठीक ठाक है
1: जी? अल्लाह का बहुत करम जी, बहुत एहसान है जी। कौन बात कर रहे हैं?
5: मैं जनाब अब्दुल्ला लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो मैं अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और इसी तरह आप हंसते बसते रहे और अपना शो चलाते रहे, और माशाल्लाह मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपका शो सुनने का, और इसके अलावा मैं आपके एक शेर सुनाऊंगा।
1: जी सुनाइएगा।
5: कि इतना हसद करते हैं लोग हमसे,
1: इतना हसद करते हैं लोग हमसे,
5: कि महफिल खुद की सजाए और बातें हमारी करते हैं।
1: महफिल खुद की सजाते हैं और मैं समझ गया बात। बहुत खूबसूरत, सलामत रहे।
5: इसी के साथ तो आप सुनने वालों को सलाम और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। फोन करने में झिझक है तो मुझको मैसेज में आमदो रफ्त की औकात बता सकती हो। मैंने जिस जिसको भी चाहा है, बहुत चाहा है, तुम किसी एक से तस्दीक करा सकती हो। ये उस्मान तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है। तुमने जो मैसेज भेजा है ना मुझे शेयर का, चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी।
6: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम।
6: और रहमान भाई क्या हाल है?
1: अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान।
6: बंदा खासदार अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन।
1: बिल्कुल, मैंने पहचान लिया था।
6: नहीं, मैं अभी मैं कहीं गया हुआ था काम।
1: अच्छा।
6: तो मैंने कहा रहमान भाई को भी काफी अच्छा बात नहीं हुई।
1: बिल्कुल ऐसे ही।
6: आपने छुट्टियां भी की, सेहत के भी प्रॉब्लम थे।
1: जी जी ऐसे।
6: तो मैंने कहा अभी आज को आपको याद कर दिया जाए। तो आज कोई खास टॉपिक है कोई? मैंने अभी क्यों नहीं किया
1: टॉपिक। दरअसल इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, ये टॉपिक था।
6: इंसान की सबसे बड़ी जो रिश्ते जो होते हैं ना
1: जी,
6: इनको निभाना, चाहे अपने बच्चों की परवरिश हो, वालदैन की इज्जत हो, अजीज व अकारब हो। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसान की यह भी समाज के जितने भी रिश्ते हैं उनको निभाए भी और इंजॉय भी करे।
1: बिल्कुल ठीक
6: है। की हदीस है, कतअ रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और पिछले दिनों अच्छा दरवेश शायर सागर सिद्दीकी की बरसी थी
1: जी,
6: तो उनके कलाम से चंद शेर।
1: जी जी।
6: आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया।
1: अच्छा।
6: अपने उजड़े हुए गुलशन को बहुत याद किया। जब कभी गर्दशे तकदीर ने घेरा है हमें, गैसवे यार की उलझन को बहुत याद किया। शमा की जोत पर जलते हुए परवानों ने एक तेरे शोलाए दामन को बहुत याद किया। जिसके माथे पे नई सुबह का झूमर होगा, हमने उस वक्त की दुल्हन को बहुत याद किया। आज टूटे हुए सपनों की बहुत याद आई, इस दरे यार की चिलमन को बहुत याद किया। और मकता है, मुतमिन हो ही गए दामो कफस में सागर, हम असीरों ने नशेमन को बहुत याद किया। आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया, अपने उजड़े हुए गुलशन को बहुत याद किया। दुआओं में याद रखें।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। हिफ्ज़ा खालिद ने मुझे कुछ नज़्में भेजी हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। कहती हैं कि आज भी सुबह से निकले थे कहीं, कोई उम्मीद कोई आस नहीं, कोई वादा कोई इकरार नहीं। कौन जाने के कहां जाते हो, रोज आते हो चले आते हो, अजनबी देश है परदेसी हो, कोई रिश्ता कोई नाता भी नहीं, कोई अपना या पराया भी नहीं, नौकरी या किसी धंधे के लिए कोई नेता या कोई अफसर है, कोई फन कोई हुनर आता है, दस्तकारी या कोई काम नहीं, घर से कुछ साथ में लाए होगे, खर्च के वास्ते कुछ दाम नहीं, जाने किस आस पे तुम जीते हो, जाने तुम खाते हो क्या पीते हो, आज भी सबसे भूखे होगे, नाश्ता चाय या कुछ और नहीं। अच्छा, तुमने प्रैंक किया मेरे साथ हिफ्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी।
7: अस्सलाम वालेकुम।
1: अरे अनिला साहिबा, कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं?
7: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और दुआ करूँ कि जो जहाँ सुन रहा है सबको सलामत रखे। और
1: आमीन,
7: स्पेशली आपके लिए। मैं तो फोन खराब था कुछ दिनों से, कल ही मेरा फोन ठीक हुआ।
1: हाँ, और हमारा भी इधर ये वाला जो टेलीफोन सेट था, ये लाइन हमारी प्रॉब्लम की हुई थी बारिश के पानी की वजह से।
7: हाँ, इधर तो बारिश का पानी गया था ना, तो आपकी ये फोन लाइन खराब थी, मेरा तो फोन बेचारा सीढ़ियों में से कलाबाजियां करते हुए गिर
1: गया। वाओ, जिमनास्टिक का शौक हुआ होगा उसे।
7: बस पता नहीं क्या बचा इसमें और क्या क्या उड़ गया। अभी बहर ये कि कॉल मिल जाती है, शुक्र है। और अफसाना बहुत खूबसूरत पढ़ा, नो डाउट। रवीना आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने,
1: बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह
7: आपकी खूबसूरत आवाज और उसमें अदायगी इतनी खूबसूरत होती है ना, मोती परोए जाते हैं जैसे मैं कहा।
1: अरे सलामत रहे, थैंक यू वेरी मच।
7: तो बाकी अभी इरम आई थी, उनके लिए मुझे बहुत सी दुआएं, थैंक यू इरम, जीती रहो, और प्रवीण आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और रहमान, आपने जो क्वेश्चन एक रखा है कि इंसान की जिम्मेदारी क्या है,
1: सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है,
7: अपने अमल सुधार लें। है ना, लेके क्या जाना,
1: असल बात तो यही है।
7: हाँ, तो वो जिम्मेदारी निभा लें ना, पहले खुद को तो सही कर लें, अपने अमल अच्छे कर लें, फिर अपने जो बाकी जिम्मेदारियों में आ जाते हैं, रिश्तों के तकद्दस उनको कायम रख लें।
1: सही कहा आपने,
7: सबसे पहले जिसने हमें बनाया है उसकी तरफ हमने लौट के जाना है, तो वो अमल सुधार लें अपने, क्योंकि लेके क्या जाना है, जिम्मेदारी ये भी तो है ना कि जो लेके जाना है उसका भी तो सोचे।
1: कोई गिल्ट अगर दिल में पैदा होता है तो इसका मतलब है कि सफर मुश्किल हो जाएगा। अगर गिल्ट नहीं पैदा होता तो फिर कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं।
7: फिर तो है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी और बहुत सारी अपनानी भी पड़ती है।
1: बिल्कुल ऐसे, नो डाउट।
7: तो ही हमें अपनी जिम्मेदारियों की, पहले तो हमें समझना है कि जिम्मेदारी है क्या।
1: हाँ,
7: उसको समझते हुए फिर हमें बहुत सारी चीजें अपनानी और बहुत सी छोड़नी पड़ेंगी।
1: हाँ,
7: फिर हम निभाते चले जाएंगे।
1: बिल्कुल,
7: फिर शायद इंसानियत का थोड़ा हक भी अदा हो जाएगा।
1: यस, इंसानियत का तकाजा पूरा हो जाएगा,
7: वो भी तो पूरा करना है ना।
1: बिल्कुल,
7: जिम्मेदारी में आ जाएगा। और जबरदस्त शायरी बड़ी अच्छी पढ़ी है भीरम ने भी, और प्रवीण साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगु कर गई, और आपने अफसाने को बहुत खूबसूरत। अच्छा रहमान, नेक्स्ट टाइम को और भी अच्छा सा लेके आए ना अफसाना।
1: मैं अब ये रेगुलर बेसिस पे करने वाला हूँ, सारे पढ़ने वाला हूँ।
7: हाँ, जो आप पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं साथ, वाओ बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, धीमा धीमा सा, और बिल्कुल उससे मेल खा रहा होता है जैसे स्टोरी से ना, अफसाने से। बहुत खूबसूरत लग रहा होता है।
1: बड़ी मुश्किल से ये बीजीएम बनाया था, ये मैंने खुद ही बनाया था, लेकिन है ये किसी ड्रामे का ही, लेकिन ये बनाया मैंने था, एडिट मैंने किया इसको।
7: नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्योंकि इतना सूट कर रहा है ना, पीछे म्यूजिक चल रहा है और आगे आप पढ़ रहे हैं ना, वैसे जैसे मेल खा रही है चीज के, बने ही ऐसे है जैसे।
1: वाह वाह, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहे, सलामत रहे,
7: बहुत जबरदस्त, और सबके लिए बहुत सी दुआएं। सलाम, आज मैंने फिर डॉग्स के शो में 1000 रुपए जीता।
1: अच्छा, ये आप ही जीत सकती हैं इतने पैसे।
7: अच्छा, मजे की बात ये, अक्सर डॉग्स के शो में मेरी कॉल ही नहीं मिलती, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब मैं ये आंसर करने के लिए मिलाती तो फौरन मेरी कॉल लग जाती।
1: वाह,
7: पता नहीं शायद वो पैसे मुझे मिल गए।
1: हाँ नहीं, वो किस्मत में पैसे लिखे होते हैं इधर से आने ही।
7: मेरे पास हालांकि देखिए 1000 रुपए के,
1: वैसे कितने की जीत, अभी तक कितने जीत लिए होंगे आपने?
7: आई थिंक मैंने 3 या 4000 तो जीत लिए।
1: वाह, दोस्ती करनी पड़ेगी आपसे।
7: तो मेरी कोशिश होती है चलो किसी के काम ही आएंगे कुछ ना, अब देखा जाए तो 1000 के, लेकिन जिनके लिए उनको तो बहुत लगता है ना, जाहिर बात है उनके लिए जिसको जरूरत हो उसके लिए तो 1000 भी बहुत बड़ी रकम है।
1: बिल्कुल ऐसे ही,
7: बाकी ये है कि आसानियां बांटते रहना चाहिए, अच्छी बात है, और बहुत खूबसूरत, अब आते रहिएगा, अब आप ठीक है माशाल्लाह से ना?
1: जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।
7: बस अब परहेजियां नहीं करनी, किसी तो चीज लेके नहीं खानी। अच्छा,
1: हाँ ये डॉग्स को कहा, मैं खुद अमल नहीं करता उस पे, गलत बात,
7: आपके लिए भी है ये।
1: बिल्कुल सही।
7: ओके ओके, थैंक यू सो मच,
1: अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, साथ ही इफ्जा ने नई कॉल सेंड कर दी। इफ्जा कह रही हैं कि जी हमारे गम जुदा थे, करिया दिल की फिजा, आबो हवा मौसम जुदा थे, शाम तेरे जिस्म की दीवार से चिमटी हुई थी, मुझको काली रात खाती थी, तुझे आवाज देती थी तेरे अंदर से उठती हूक, मुझको भूख मेरी रूह से बाहर बुलाती थी, तुझे पाँव में पड़ती बेड़ियों का रोग लाहिक था, मुझे आज़ादी पे शक था, तुझे अपनों ने अपने खेर का आदि बनाया था, मुझे बेरिश्तगी ने जात का भेदी बनाया था, मुसलसल लेख पर गर्दिश में रहना नाचना तेरा वतीरा था, मेरी एक अपनी दुनिया थी, मेरा अपना जजीरा था, कोई दरिया था अपने बीच, हम दोनों किनारे थे, अलग दो कहकशाएं थीं जहां के हम सितारे थे। बहुत अच्छे दानियाल तरीर का ये नज़्म आपने भेजी, बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी।
8: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम
8: जी। मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ पेशावर से।
1: कैसे मिजाज है अली आपके, आप खैरियत से? पेशावर में फ्रीक्वेंसी पे हमारा प्रोग्राम आ रहा है
8: जी। जी शुक्र अल्लाह का आ रहे हैं, कॉल नहीं मिल रही थी, लेकिन
1: अक्सर ऐसा होता है कि मेरा प्रोग्राम जो होता है वो पेशावर वहाँ से ऑन एयर कर रहा होता है, ये वाला लोकल प्रोग्राम। बहरहाल कैसे मिजाज हैं आपके अली, आप खैरियत से?
8: अल्लाह का शुक्र।
1: पेशावर का मौसम कैसा है?
8: शुक्र अल्लाह का अब फिलहाल तो अच्छा है। कुछ दिन पहले काफी बारिश हुई थी, अभी फिर कह रहे हैं कि बारिशों का दौर शुरू होगा,
1: अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे।
8: और ये मैं खाली पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह होंगी,
1: हो रही है
8: शुक्र, फिर होंगी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद कह रहे हैं, तो फिर पूरे पाकिस्तान का मौसम भी काफी चेंज हो जाएगा
1: इंशाल्लाह।
8: आपके टॉपिक पे मैं बात कर रहा था कि आपके टॉपिक में बहुत लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, अच्छी बातें की, शायरी माशाल्लाह अच्छी की है
1: जी,
8: लेकिन मेरे जहन में एक बात आई कि इंसान को आखिरत के बारे में कुछ सोचना चाहिए
1: जी, बिल्कुल।
8: जब इंसान यहाँ इस दुनिया से जब जाएगा, कुछ करेगा, तो अल्लाह के आगे क्या लेकर जाएगा।
1: वाह वाह, बहुत बड़ी बात और बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, बिल्कुल ऐसे ही।
8: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को एक वो किया, तो इंसान को बड़ी ये चीज सोचनी चाहिए तो बहुत अच्छा है। इसमें मुझे एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कॉल याद आ गया,
1: मैं शॉर्ट
8: कट में पेश करता हूं।
1: जी कहिए।
8: अभी मैंने आपके बोल का है तो बिजली जरा सी चमकी है बादल में, तो मौसम शुक्र अल्लाह का मौसम अच्छा हो रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने एकदम कहा कि यार मुझे हमें अल्लाह ताला से हाथ मिलाना है, शायद आपने सुना भी हो ये वाक्य, तो एकदम कहते एकदम वही नाजल हुई है, कहते ठीक है मिलाते हैं, तो जब हाथ मिलाने के लिए जब आ गई मैं सहाबा कराम तो एकदम ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया था, तो उन्होंने कहा नहीं मुझसे नहीं मिलाओ, हजरत अली अलैहि सलाम से जाके मिलाओ। तो हजरत अली अलैहि सलाम के पास गए हैं सहाबा कराम भागते भागते, तो फिर हजरत अली अलैहि सलाम को वाक्य पेश किया, तो जब हजरत अली अलैहि सलाम को जब वाक्य पेश किया तो जब हाथ मिलाने के लिए आ गई तो एकदम हजरत अली अलैहि सलाम ने रोक लिया, फिर रुको, कहते क्यों, कहते किसके माँ वालदैन जिंदा है, तो कहते हैं एकदम ही सब, कहते वो सैड हो जाए जिसकी वालदा जिंदा है वो सैड हो जाए, जिसके वालद जिंदा है वो सैड हो जाए, और जिनके दोनों जिंदा है वो सैड हो जाए, और जिनके नहीं है वो इधर हो जाए। तो फिर आखिर में कहते कहते जिनके वालदैन जिंदा है वो जाए अपने वालदा का हाथ चूमे, वालदैन का हाथ चूमे, तो समझ लें आपने अल्लाह से हाथ मिला लिया, और जिनके नहीं है वो आए आ जाए मेरे पास हाथ में चूमे। तो सबसे बड़ी चीज जो है ना हमें जो है आखिरत को सोचना चाहिए, और दूसरे अपने वालदैन की जो है ना इनकी खिदमत करनी चाहिए, ये हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत है और हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अली,
8: आपको खुश रखे, आपको और सुनने वालों को सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सिराज भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, बिनते सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी पैगाम हैं, शामिल करूंगा टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं जी? आपकी आवाज़ दरअसल कट रही है भाई साहब।
9: अब सही आ रही
1: जी, अब बेहतर आ रही है जी, कहिएगा क्या कह रहे थे।
9: मैं लाहौर से बेंकोड से शाहिद बात कर रहा हूँ।
1: जी शाहिद साहब, खुश आमदेद कहते हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे।
9: मैं भाई आपका क्या हाल है, ठीक
1: हो? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान है जी।
9: आपने जो सुनना पड़ा बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आया।
1: अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
9: मैंने पहली दफा कॉल की है, पहले नहीं कॉल करता, लेकिन मैं खामोश लिसनर हूँ, तकरीबन 2 साल से सुन रहा हूँ।
1: बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, सलामत रहे, आबाद रहे।
9: सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
1: खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।

शुक्र किया है इन पेड़ों ने, सब्र की आदत डाली है। इस मंजर को गौर से देखो, बारिश होने वाली है। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, बाकी कमरा खाली है। बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ, बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। डॉक्टर राबिया, आपके सारे मैसेज आज पढ़ूंगा, कोई मैसेज नहीं छूटेगा, नाराज नहीं होना। बस ये एक ट्रैक प्ले करूं, इसके बाद वापस आता हूं।

राइट जी, वन सेकेंड, वेलकम बैक। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो।

सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर आपके पैगाम। मरीना बिलाल हमारे साथ, रहमान अफसाना पढ़ने का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान, वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर। रहमान आपने अफसाना अच्छा पढ़ा है, थैंक यू वेरी मच। ताहिरा मसूद साहिबा है हमारे साथ कराची से। रेजा रेजा टूट रही हूं अब तो मुझको जोड़ वे साया, रंज और गम का ये कासा अब अपने कर्म से तोड़ वे साया। दामन मेरा खाली खाली, आंखें भी हैं मेरी सवाली, राह मुसलसल है ये जीवन मंजिल वल अब मोड़ वे साया। कोई वजीफा मैं कब जानूं, अपना मन क्या मैं पहचानूं, मेरी मंजिल तेरा दर है मत रस्ते में छोड़ वे साया। उलझे लेख हैं मेरे साया, दर्द मुझे हैं घेरे साया, जीते जी मैं मर ही ना जाऊं, रहमत को झंझोड़ वे साया। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। बहरहाल अच्छा आगे भी है। जिसने मुझको मार दिया है ये उजड़ा संसार दिया है, उस बदबख्ती उस सख्ती की अब आंखें फोड़ विसाया। मेरे अंदर मर गया कोई, दर्द समुंदर भर गया कोई, डूबने वाली जीवन कश्ती रुख साहिल वल मोड़ विसाया। अध अधूरी जात है मेरी, बेतासीर सी बात है मेरी, सुन शाहीन की बिपता अब तू मत उसका दिल तोड़ वे साया। डॉक्टर नजमा शाहीन खूसा का कलाम आपने भेजा। जाने का दिल नहीं है अभी, अभी मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करूंगा। मरीना कह रही हैं कि रहमान आज कैसे अफसाना सुनाने को दिल चाह गया। मरीना मसला ये है कि मैंने बहुत अरसे से ना अफसाने पढ़े नहीं हैं, किताबें इतनी सारी पढ़ी हुई हैं, लेकिन एक मसला ये भी है कि मैं ज़रा थोड़ा सा याददाश्त मेरी कमज़ोर हो गई, बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती, और इसलिए ये अफसाना पढ़ा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ये ट्रेंड दोबारा से सेट किया जाए, अफसाने को पढ़ने का ट्रेंड डिफरेंट तरीके से, ड्रामाई अंदाज में। मुख्तलिफ अफसाने हैं ऐसे, पढ़ूंगा मैं। नौशीन रशीद हमारे साथ हैं, कह रही हैं वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। बिनते सिद्दीक दिल भेजा है आपने, बहुत शुक्रिया। बिनते सिद्दीक कह रही हैं कि मैंने जिद को मोहब्बत पे वारा नहीं, जब्त से मर गई पर पुकारा नहीं, एक अपने सिवा और किसी शख्स की मिन्नतें करना मुझको गवारा नहीं। वाह वाह खूबसूरत। एक और मैसेज है बिनते सिद्दीक का, कहती हैं कि मैं हिजर और वसल दोनों मरहलों में हूं, बैठा है मेरे पास वो जाने के बाद भी। बहुत अच्छे, अच्छा शेर, मजा आया, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं आरजे किरण, आरजे माही, थैंक यू वेरी मच। माहिया हमेशा सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें। वो काम जो कई लोग मिलकर कर रहे होते हैं आप अकेले ही कर जाते हैं, अफसाना पढ़ जाते हैं, कैसे कर लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है रहमान इस तरह से अफसाना पढ़ने की, लेकिन मैंने घर में बहुत बार कोशिश की, लाइव पढ़ने का तो मेरे अंदर हिम्मत और है ही नहीं, मेरे अंदर हिम्मत है ही नहीं। अच्छा
हमीद गुल साहब कह रहे हैं, हमने मतरूक मोहब्बत की है, दिल ने उस पर भी शिकायत की है। अच्छा, फैसल अब्बास हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, वेलकम टू द शो फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू शो, थैंक यू वेरी मच, दिल भेजा है आपने साथ फैसल, थैंक यू वेरी मच, खुश हैं। आरजे अल्लाह के नेक बंदो मत डराएं, अच्छा पता नहीं, अच्छा ऐसे कुछ लिखा आपने मरीना। असमा कौसर साहिब हमारे साथ हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम भैया, वेलकम, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें, जीती रहें, नाइस शो आपने कहा है। मरीना कह रही हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज रहमान को अफसाना सुनाने का ख्याल भी आया। रहमान आपने अफसाना अच्छा पढ़ा है, अफसाना अच्छा पढ़ने का बेहद शुक्रिया, अफसाना पढ़ने का बेहद शुक्रिया, तो मैसेज पहले मैंने पढ़ लिया शायद। आयशा खान हमारे साथ हैं, कह रही हैं, ज़िंदगी हसीन है, तुम पर यकीन है, तुमने यकीन तोड़ा मेरा, अमीर हो तो दिल अभी भी गरीब है,

इधर कह रही हैं कि लाहौर में आपको मामा घर पे सुन रही हैं और मैं यूके में आपको सुन रही हूँ इस वक्त। ने बताया भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अफसाना बहुत शुक्रिया पढ़ने का, और ये जरा थोड़ा सा एक घंटा पहले अपलोड कर दिया करें अपना स्टेटस ताकि हमें पता चल जाए। बंदा काम काज में मसरूफ होता है, सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए नहीं बैठा होता। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि वाकई में आज आपने उसका हक पूरा किया है अदा। अच्छा सीधा लिख लिया करो। ऑलराइट, जो आंटी आप यहाँ पे सुन रही हैं लाहौर में, थैंक यू वेरी मच, खुश हैं आबाद रहें। आपने दुआएं भेजी हैं बहुत सारी, राबिया ने मुझे आपका मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच, खास तौर पे गले के लिए बहुत सारी दुआएं आपने की हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आंटी, खुश रहें आबाद रहें। अमल हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अमल।

माहिया कह रही हैं कि नहीं वाकई में मैं अफसाना नहीं पढ़ सकती, आप ही पढ़ सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो आपने एक बार पढ़ा था वो प्लीज दोबारा से एक बार पढ़ दीजिएगा। जरूर पढ़ूंगा, जल्द पढ़ूंगा, वो सारे अफसाने पढ़ूंगा। अच्छा, वो मैंने यहाँ पे तो नहीं पढ़ा, वो किसी और रेडियो पे पढ़ा था। अच्छा, तो वो याद है अभी तक। बहरहाल वो जल्दी पढ़ूंगा। डॉक्टर सुमायरा हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त। कह रही हैं कि मौसम अच्छा है, रात ठंडी हो जाती है। एप्लीकेशन में रिपीटेशन आ रही थी लेकिन अब ठीक हो गई है। एक बार वो शेर दोबारा पढ़ दें जो आपने स्टेटस पे लगाया, मैंने रिकॉर्ड करना। ले जी, मैं पढ़ने लगा हूं। यूं भी हो सकता है कि एकदम कोई अच्छा लग जाए, यूं भी हो सकता है कि एकदम कोई अच्छा लग जाए, बात कुछ भी ना हो और दिल में तमाशा लग जाए। मेरा बहुत प्यारा भाई है वरुण, की बहुत खूबसूरत आवाज है। आरजे अरहम भट्ट हमारे साथ हैं, कहते हैं किताबों से मेरा शगफ वैसे ही कायम है मगर अब उन्हें मैं वक्फे वक्फे से पढ़ता हूँ। इस मसरूफ जिंदगी में यकीन करें कि हमारे पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं होता, लेकिन अगर हमें तरक्की करनी है, तरक्की की मनाजिल तय करनी है और इल्मो तहकीक के मैदान में कुछ करना है तो हमें गैर निसाबी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। रहमान भाई, आपने जिस तरह से आज पढ़ा है, यकीन करें कि आपने रेडियो पाकिस्तान की पुरानी याददाश्तों को ताज़ा कर दिया है। आपकी आवाज़ और इशफाक साहब का मवाद मुझे दोबारा आपका मद्दाह बना गया। इतने खूबसूरत अल्फाज लिखकर यहाँ पे भेजने के लिए यार, हम तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो, सलामत रहो हमेशा। आरजे अरहम भट्ट, बिनत सिद्दीक, हमीद गुल साहब, रोशनी, मोहम्मद हमजा अहमद, सैयद अजहन सागर लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ नाम लिखा हुआ है, ताहिरा मसूद साहिबा और अजहान है शायद, अजहान, सैयद अजहान सागर, ताहिरा मसूद साहिबा हमारे साथ हैं, मरीना बिलाल, मुस्तफ़ा, वन वन की बहुत खूबसूरत आवाज़ हैं, थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा। अमल हबीब हमारे साथ हैं, महजबीन, थैंक यू वेरी मच। फैसल अब्बास हमारे साथ हैं, असमा कौसर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या बताऊं, आपने मेरा मैसेज पूरा नहीं पढ़ा है, राबिया कह रही है। कौन सा वाला मैसेज? राख सारे सफे पर लिख रहा हूं। यार ये ड्राइगानी हिस्सा दोएं मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा अभी, इस वक्त दिल नहीं कर रहा कोई नाज़्म पढ़ने का।

मैं उस वक्त से ही आपको सुन रही हूँ जब आप दूसरे वाले जो आरजे हैं वो कह रहे थे कि रहमान आ गए। डॉक्टर अलीना हमारे साथ हैं, कह रही हैं कि ये नज़्म शामिल करते हैं, क्योंकि तुमने काफ़ी अर्से के बाद फरमाइश की है नाराज़गी में रहते हुए, तो मैं पढ़ देता हूँ। अलीना, कौन मालूम करे रखते सखुन कैसे हुआ, हाथ उठता है ना हाथों से कलम उठता है, ऐसी हालत है कि कमयाब ख्याली से मेरा रोज एक बार तखय्युल का भरम खुलता है। हाय वो जोर बयां शोला रवा शायर जो बात करता था तो एक नज्म बयां होती थी। हाय वो जोर बयां शोला रवा शायर जो बात करता था तो एक नज्म बयां होती थी। वो मजामीन सुनाता था जमाने भर को, शेर सुनने को मोहल्ले में आजा होती थी। एक मिसरा जिसे यूनान से हेलन ने दिया, एक गजल मिस्र के बाजार से ले आता था। वो कोई शेर लगाता था दरे काबा पर और जिब्रील भी आदाब बजा लाता था। जाने वो कौन से ऑफिस में लगा है कि अब आह भी वजन में पूरी ही नहीं आती है, लिखने लगता है तो उर्दू की रिवायत की कसम बास लफ्जों की लिबादे से नहीं जाती। ऐ कोई यार मुझे फिर से बचाने वाला, कितनी रातों से मैं घर ही से नहीं निकला हूँ, कितनी रातों से मैं घर से ही नहीं निकला हूँ, चाय खाने पे कोई रात नहीं गुजरी मेरी, कैसे बिखरूंगा मैं अब जितना सिमट बैठा हूँ। मेरे नाम कर दें, आपके नाम कर दिया अलीना। सच तू समझ, कोई बात बुरी लगी हो तिफल मकतब समझकर ये सोचकर कि अभी सीखने के अमल में हूँ, अभी तालिब इलम, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशाल राह हो गई, यहां पे आने का प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता। ऐसा है ना? यस, बिनते सिद्दीक ने मैसेज भेजा है, स्माइलीज भेजे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेंसडे मिडनाइट। बुध की रात 12 से लेकर 2 बजे वाले प्रोग्राम, अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा तो उस हवाले से प्रोग्राम करेंगे। जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए उनका बेहद शुक्रिया, जो मेरी बातें सुनते सुनते सो गए उनका बेहद शुक्रिया, कानों में हैंड फ्री या फिर एयरबड्स लगे रह गए, अभी भी आवाज जा रही आपकी समाअत का शुक्रिया।

वकील हुसैन राजपूत फैसलाबाद से। फहद हमारे साथ हैं, अताउल्लाह थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम की सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती हैं खदीजा मुराद साहब। अजीम जट फैसलाबाद से हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। वनवन की बहुत खूबसूरत आवाज है, आरजे अली रजा हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। वनवन की प्रोड्यूसर हैं किंजा साहब, थैंक यू वेरी मच। राणा काशिफ फैसलाबाद से, हिफ्जा खालिद मियो हॉस्पिटल से, थैंक यू वेरी मच। आतिफ अब्बासी आपका बेहद शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें।

मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हम्मी नासर।

आती है जिंदान में नहीं आती। हुण मैं के करा इसरे आई दा, ओ ते टुर गई है ना, ओ ते मर गई है जड़ी पुछदी आए परिंदे शाम होवन किथे वेंदन। भैया क्या हम भी घर जाए।

रोती आंखों के साथ कहो वाह वाह हुसैन। जिस हाल में हो, गाड़ी चला रहे हो, थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, रोक लो। लेटे हो, कुछ टाइम के लिए बैठ जाओ। जिस हाल में, जिस जगह पर हो, मैं जानता हूँ गला साथ नहीं देगा, जुबान साथ नहीं देगी, आंखें बह रही हैं, बहती आंखों के साथ, लड़खड़ाती जुबान के साथ, हाथ फजा में बुलंद।

वाह हुसैन भाई वाह हुसैन, अब से चंद लम्हात के बाद मौजिन सदा लगाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मत पूछो तारीख की बेजुबान किताबों से, सुनो अजान तो जानो हुसैन जिंदा है। अब से चंद लम्हात के बाद जब मौजिन ये सदा लगाए अल्लाहु अकबर, जब खुदा के सामने सर बासजूद हो, सलाम फेरने के बाद एक सजदा शुक्र अदा करना और सजदे में ये कहना या खुदा तेरा शुक्र है तूने हुसैन जैसा गैरतमंद इमाम दिया।

जनाब जाने का वक्त हुआ जाता है। कुछ मैसेजेस आप लोगों के मेरी नज़र से गुजरे हैं। मैनी ऑफ यू आस्किंग मी अबाउट द नियाज ऑफ द चेहलम। सेम है जी, मैं ये है, मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका तذکرہ इसलिए नहीं करता कि ब्रैग ना लगे या वो मामला ना लगे। इवन मैं सोशल मीडिया पे भी उस चीज़ की स्टोरीज अपडेट करता हूँ जिसमें लोगों ने मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया, ताकि उनको एक बेहतर फील हो कि वट एवर दे हैव गिवन इट्स गोइंग इन द वे, वो एक देख के एक अच्छा महसूस करें। अदरवाइज़ हमारे मामलात एवरी थर्सडे चलते हैं, जहाँ जहाँ जितना पॉसिबल होता है, जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। बाकी एज मैनी ऑफ यू आस्किंग मी अबाउट द नियाज ऑफ द चेहलम, तो सेम है। इफ़ एनी वन वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट, जस्ट यू कैन जस्ट डी एम मी, जैसे हमेशा हम करते हैं। यू कैन डू दैट, इट्स टोटली ओपन एज दिस इज एज इट इज़। मैं अब इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। अगले दो मिनट में आपसे इजाज़त लेते हैं। मेरी कैफियत ऐसी नहीं है कि मैं एक्चुअली कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरे जहन में वो जुमला स्टक हो गया है।

एक लोरी है जो शबे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे सैयदा सकीना को दी। शायर ने उसको कलम बंद किया। वैसे तो ये अरबी में है लेकिन इसकी ट्रांसलेशन फिर उर्दू में भी की गई और फिर उर्दू के साथ साथ सराइकी में भी पढ़ने वालों ने इसको पढ़ा। एक लोरी है, उसके चंद अशार, फिर आपसे इजाज़त। शबे आशूर यानी कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम की दरमियानी शब, जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ खैमों में जा रहे हैं। जनाबे सकीना के खैमे में दाखिल हुए तो देखते हैं कि सकीना कभी ऊँग लेती हैं, कभी खैमे के साथ टेक लगाती हैं, एकदम डर के उठती हैं, फिर नींद आती है, फिर सोती हैं। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बाहों में लिया। फजर का वक्त करीब था, सीने पर रख के सुलाना चाहा, लोरी देना शुरू की। शायर ने कलम बंद किया। बचड़ा सकीना हाजिर प्यो दसीना, बचड़ा सकीना हाजिर प्यो दसीना, हजारात खड़ी है संपो सकीना, हजारात खड़ी है संपो सकीना। जनाब सकीना ने मुकालमा किया। बाबा जान, फजर का वक्त करीब है, चंद लम्हात के बाद नमाज फजर पढ़ूंगी, सुबह सो लूंगी, कल सो लूंगी, आशूर के दिन सो लूंगी। शायर ने जवाब कलम बंद किया।

कभी कहा ना कि कल मिट्टी पे बैठोगी, तमाचे लगेंगे, तो कहा मेरा भाई अली अकबर है, किसी की जरूरत अली अकबर के होते मुझे हाथ लगाए। शायर ने जवाब कलम बंद किया। अकबर ना बच सी हो, अकबर ना बच सी हो, कुबर छी लग सी, अकबर ना बच सी हो, कुबर छी लग सी।

मुझे इजाजत दीजिए, अब से चंद लम्हात के बाद मौजन जब सदा लगाए अल्लाह अकबर, अपनी इस रूहानियत नूर भरी कैफियत के साथ हाजिर हो जाइएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहि सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रो कर मांगना पड़े, ज़रूर मांगिएगा। खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहि सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहां ना दाओ साडा जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आप परफेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, तो फिर ठीक है, जाने जैसे जा रहे हैं। अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहां ना दाओ साडा जामन। जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उना दे सदके साडी भी खैर। अल्लाह हक, अल्लाह हक, अल्लाह हक, हक मौजूद सदा सदा सदा सदा मौजूद। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। फीडबैक देने के लिए इंस्टा पे जाइए, जिशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 जिशान नासिर 26। आपको याद है मैंने लास्ट प्रोग्राम से अपनी एंडिंग का तरीका थोड़ा चेंज किया, और क्यों किया वो भी बताया था, याद है या भूल गए हो?

बिल्कुल जी, आप सभी लोगों को याद है, जिन लोगों को नहीं याद, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया, मैं बता दूं, मैंने ईयर्स किया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अब आज के बाद जब आपसे साइन आउट करूं, अल्लाह हाफिज़ कर लूं, उसके बाद हम एक नारा बुलंद करेंगे। नारा बुलंद होते ही उस नारे के दरमियान में ही मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि अगर ज़िंदगी मुझे दोबारा कभी मौका ना दे इस माइक्रोफोन में आने का, ज़िंदगी का पता कोई नहीं किस रास्ते पे किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए, अगर मुझे ज़िंदगी ये मौका ना दे कि मैं दोबारा इस माइक्रोफोन पे बैठूं और आपसे मुखातिब हूं, तो मैं चाहता हूं कि आखिरी बात जो मैंने आपसे की हो वो नारा हक बुलंद किया हो।